जो मजा इसमें आता था ना कि कोई गेट के पीछे छिपा होता था और अपन बाहर आते थे तो पीछे से भौंक करके डरा देता था, उतना डर तो यार अच्छी खासी मूवीज में भी नहीं लगा। ना ना ना ना, आजकल मूवीज में ना दो फ्लेवर डाले जा रहे हैं, हंसाने वाले और डराने वाले। वो फ्लेवर तो मुझे बहुत ही कम पसंद आए हैं, स्पेशली भूल भुलैया मूवी का सेकंड एंड थर्ड पार्ट, राइट? तो चलिए चलिए आपको बता देती हूँ, इस मूवी का जिक्र दोबारा से सुर्खियां पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भूल भुलैया मूवी का फोर्थ पार्ट जो है ना वो प्लान किया जा रहा है, एंड ऑफकोर्स वंस अगेन कार्तिक आर्यन को इस मूवी के लिए प्लान किया जा रहा है। ओह माय गॉड, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, बिकॉज जो मजा अक्षय कुमार में था वो मजा किसी और में नहीं। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर दिस साइड।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
2: जोश में
3: भाई अंदर की बात निकल कर आई है कि जो बच्चा पहले पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है वही बच्चा आगे जाकर इंटेलिजेंट बन जाता है। आप भी उनमें से एक है क्या? आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ एंड सुनने में आया है 90s में 20s में वो चाहे 1995 में अक्षय कुमार की मूवी रही हो पांडव, 30 मार खान में 2010 में जब वो आई थी या मिशन रानी गंज भी आई हो, तो भाई जो आसपास में अक्षय कुमार के को स्टार्स रहते हैं उनका कहना पता है क्या है कि अक्षय को एक साथ बहुत सारे डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं, इसीलिए जब मूवी शूट करी जाती है तो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट दी जाती है और अक्षय के डायलॉग्स बहुत छोटे छोटे बंच में उनसे याद करवाए जाते हैं। भाई बड़े बड़े एक्टर्स के अंदर भी कमी है, आप कहाँ मिस्टर परफेक्ट ढूंढने निकले हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर द साइड, बैक टू बैक बातें, बैक टू बैक गाने, मेरी जान।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। घर बैठे बैठे तो कैसे पब्लिक स्पीकिंग आएगी, घर बैठे बैठे मेरे यानी आरशे नुपुर की तरह बातें आप कैसे बना सकोगे। अरे बना सकोगे यार, अगर आप मस्ती मीडिया अकेडमी का कोर्स ज्वाइन कर ले। राइट, तो देखो मन में कई बार रहता है यार, हमें कंटेंट क्रिएशन भी सीखना है, हमें दूसरों का इंटरव्यू लेना भी आना चाहिए, पॉडकास्टिंग भी आनी चाहिए, रेडियो प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी करियर में। तो ये सारी चीजें आपको एक ही अम्ब्रेला में सिखाई जाएगी। कहाँ? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आपके लिए लेकर आया है मस्ती मीडिया अकेडमी। लाइव रेडियो एक्सपीरियंस दिया जाएगा, रियल स्टूडियो ट्रेनिंग दी जाएगी, एक्सपर्ट मेंटर्स आपको मिलेंगे, शोकेस अपॉर्चुनिटीज मिलने का पूरा चांस है। सो क्विकली आपको info@radiomasti.com.sg पर ईमेल कर लेना है ताकि आपको मिल जाए आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स और आप एक बढ़िया बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन पाए। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: एक वक्त के बाद ये जो पुलिस का काम है ना, मुझे लग रहा है पेपराजी फोटोग्राफर्स करने लगेंगे, बिकॉज गली गली का काम सीसीटीवी या पुलिस से ज्यादा पेपराजी फोटोग्राफर्स कर पा रहे हैं कि कौन से एक्टर ने सरहद पार करके इंडिया में एंट्री ले ली है। हाँ जी, रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा एंड उनके हस्बैंड निक जोनस एंड उनकी बेटी मालती हैदराबाद में दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि प्रियंका चोपड़ा की एस एस राजामौली स्टारर जो मूवी है वाराणसी, उसका शूट अभी भी चल रहा है। प्रियंका ने बीच में थोड़ा सा गैप लिया था और वो दोबारा इंडिया आकर अपना शूट कंप्लीट करके जाएंगी। तो वाराणसी अपकमिंग हिंदी प्रोजेक्ट प्रियंका का द मोस्ट वेटेड प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, बिकॉज इसके लिए वो कम बैक वाली फीलिंग रख रही है। यार एक लंबा गैप हो गया ना। हाँ, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

देखो, जहां पर दो बर्तन होते हैं तो आवाज तो आती ही है। ये बातें सिर्फ बातें नहीं है मेरी जान, ये असलियत है। और ये बर्तन से ज्यादा आजकल इंसानों पे ज्यादा एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि बर्तन तो नॉन स्टिक आ जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के आ रहे हैं, वो तो कहाँ बजेंगे आपस में। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज प्रदेश साइड, एंड बहुत सारे एक्टर्स की हमने कॉन्ट्रोवर्सी सुनी है कि ड्यूरिंग शूट इनकी लड़ाई हुई, उनकी लड़ाई हुई, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन इनके बारे में हमने पहले नहीं सुना था, पर सुनने में आया है हुआ तो कुछ ऐसा ही था। हाँ जी, अर्ली 90s में, 20s में गोविंदा की मूवी जो करिश्मा कपूर के साथ आई ना, तो गोविंदा एंड करिश्मा का जो एक होता है ना ईगो क्लैश, करियर क्लैश, गोल्स क्लैश बहुत ज्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से इनका सेट पे झगड़ा वगड़ा भी हो गया। दैट्स व्हाई एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये दोनों एक साथ नजर नहीं आए। आज ये रुप्रमसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
2: जोश में रहो।
0: आने वाले वक्त में अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे तो ये भी पूछा जाएगा कि भाई 2026 के ईयर में वो कौन सा ऐसा एक्टर था जिसने पिछले कुछ सालों में 300 करोड़ प्लस रेवेन्यू एक ही मूवी से बना लिया हो। एनी गैसेस एक ऐसा एक्टर जिसने बेंच मार्क सेट कर दिया हो। हाँ, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड जिस तरीके से पुष्पा मूवी का पहला पार्ट आया, पुष्पा मूवी का दूसरा पार्ट आया एंड अक्रॉस द ग्लोब इसके जो रेवेन्यू निकल कर आए, और एक ऐसा एक्टर अल्लू अर्जुन जिसने सिर्फ फीस ही नहीं बल्कि प्रॉफिट में परसेंटेज एक शेयरिंग जो है ना वो होल्ड करके रखी, तो सबसे बड़ा रेवेन्यू इनको ही जाता है। तो भाई बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े प्लान्स हैं। एनीवेज मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Musti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: अच्छा, जब कोई काम होते होते बन जाता है ना, मतलब बढ़िया हो जाता है ना, तो कोई आपकी तारीफ करने नहीं आता। लेकिन आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है तो चार लोग जरूर दिखाई दे जाते हैं कि हमने तो बोला था ये मत करो, टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, बहुत कुछ वेस्ट है। तो बस ऐसी वाली सासू माँ का रोल किसी एक्टर ने निभा लिया है। कौन? तुषार कपूर। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नूपुर द साइड एंड द पॉइंट इज, तुषार कपूर की एंट्री कैसे हुई चलिए बताती हूँ। रिसेंटली हमने वेलकम टू द जंगल मूवी का जो रीसेंट पार्ट है, आई थिंक थर्ड पार्ट है ना, वो देखा। तो इस मूवी में करीबन लीड एक्टर 34 निकल कर आए हैं। 34 लीड एक्टर्स, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि अगर फिल्म का शूटिंग चल रहा है ना, तो फिल्म शूटिंग सेट पर 250 से 300 कार्स जो है ना वो पार्क करी जाती थी, एंड 50 वैनिटी वैन्स कम से कम। तो इस हिसाब से निकल कर आया है तुषार कपूर का स्टेटमेंट कि क्या फायदा हुआ इतना खर्चा करने का, क्या फायदा हुआ इतने सारे एक्टर हायर करने का, जब आपकी मूवी फ्लॉप ही जानी थी। हाय हाय, ऐसे दुखती नफ्स पर हाथ नहीं रखते हैं, इवन तुषार कपूर ऐसा कह रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा अजीब लगता है। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: क्या बात है, क्या बात है। आज तो भर भर के बहुत सारे जवाब मुझ तक पहुंच चुके हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज नुपुर दिस साइड। एंड द पॉइंट इज कि मैंने एक फेमस सी मूवी का एक फेमस सा डायलॉग प्ले किया था और आज का डायलॉग था बहुत स्पेशल बिकॉज आज है संजय दत्त का बर्थडे। तो डायलॉग था,
3: वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या?
2: राइट, मूवी का नाम था मुन्ना भाई MBBS। एनीवेज, ये मूवी जो है वो बहुत बाद में संजय दत्त तक पहुंची थी, पता है आपको? हाँ, सबसे पहले शाहरुख खान के पास पहुंची थी, विवेक ओबेरॉय के पास पहुंची थी, फिर जिमी शेरगिल के पास भी पहुंची थी और फिर संजय दत्त के पास पहुंची थी। और जो सुनील दत्त साहब यानी संजय दत्त जी के जो फादर साहब थे, उन्होंने कन्विंस किया संजय को कि तुम्हें जिस तरह से सिर्फ विलन और क्रिमिनल के रोल ऑफर हो रहे हैं उस दौरान, तुम्हें ऐसा रोल करना चाहिए ताकि तुम अपने आप को प्रूव कर पाओ। और ये आखिरी मूवी रह गई थी जिसमें संजय दत्त ने अपने फादर साहब सुनील दत्त जी के साथ काम किया था और इस मूवी के लिए बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको मिला था। क्या बात है। एनीवेज, ऑन दिस नोट, हैप्पी बर्थडे टू संजय दत्त। मी आर जे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मुलाकात, बातें, गाने लगातार दिन भर रेडियो मस्ती पर।

0: नचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: जब एक धुन से साज का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
5: आई लव यू रसना।
4: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, Masti 90s mixtape with aapki 90s wali Antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Masti 24/7 Live.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: आज मंगलयान को इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक मंगल पर स्थापित कर दिया।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
2: क्योंकि आ रहा है मस्त हैंग आउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
1: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
2: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
0: They are fresh. They are hot.

Out to ruling the countdown. Yeah, musty top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: मानती
1: तू भी बताओ। और ये क्या है? मैं गुब्बारा खा गया? ये फुटबॉल निकल गया? कुछ तो बढ़ रहा है अंदर।
2: Welcome to your chill zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हेलो सिंगापुर एंड अ वेरी वेरी वेरी वार्म वेलकम। पता है वेंसडे नाउ मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। व्हाई? बिकॉज़ मंडे का प्रेशर ना थोड़ा उतर जाता है एंड फ्राइडे का जो एक्साइटमेंट है वो अभी आना बाकी होता है एंड दैट्स व्हाई बीच का ये दिन क्वाइटली अपना काम करता रहता है शायद इसीलिए हम वेंसडे को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, राइट? लेकिन मेरी तरफ से एक बहुत ही प्यारा सजेशन है कि आज का दिन अंडर एस्टिमेट मत करो। हो सकता है कि आज ही कोई अच्छी सी खबर मिल जाए, कोई पुराना दोस्त याद आ जाए या फिर कोई ऐसा गाना आज आपको मैं सुना दूं जिससे आपका पूरा मूड चेंज हो जाए। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आरजे मुग्धा को एंड वेलकम बैक फॉर दोस जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है या जो कहीं गए थे एंड दे आर बैक, सो वेलकम बैक। पर मेरा शो तो अभी अभी शुरू हुआ है। आप सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट। अगले 3 घंटे जो है ना आप मेरे साथ होंगे, यहाँ पे सिंगापुर की बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, बॉलीवुड की फ्रेश ताजा तरीन गॉसिप्स करेंगे और जानेंगे दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जो आपके दिल को छुएगा।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Have you ever noticed? Hi, welcome back. हम सब रोज इतनी जल्दी में रहते हैं कि ज्यादातर वक्त जो है ना बस ऐसी चीजें सामने देखते हुए निकल जाता है। ऑफिस, MRT, मीटिंग्स, मैसेजेस और इसी बीच में कब आखिरी बार आपने आसमान को देखा? 2 मिनट निकाल करके, we don't even remember, right? शायद आज और कल उसका एक बहुत ही अच्छा रीजन मिल सकता है या मिल जाए। Why? Because सिंगापुर के आसमान में 29th और 30th जुलाई की रात एक बहुत ही खूबसूरत सेलेस्टियल शो जो है वो देखने को मिल सकता है। यू नो, आसमान खुद ही प्रिपेयर कर लेता है अपने लिए खुद का एक बहुत ही रॉन्डेवू सा शो, क्योंकि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपने और हमारे दोनों के लिए चीजें प्रिपेयर कर देता है। सदर्न डेल्टा जो है और अल्फा कैप्रिकॉर्निड्स मीटियोर शार्स जो है अपने पीक पर होने वाले हैं। अगर वेदर हमारा साथ देता है, जो कि सिंगापुर में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता ही है, और सिटी लाइट से थोड़ा दूर आप जाते हैं आपको साफ आसमान मिलता है, अगर मिल जाए ये सब तो क्या ही बात थी, आय हाय क्या बात है। तो रात भर आसमान में शूटिंग स्टार्स की आप झलक देख सकते हैं, बिना गाना गाए, यस मौका मिल सकता है। सो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मिडनाइट के बाद और प्री डॉन आवर्स जो है ना, दे आर एक्चुअली द बेस्ट टू व्यू दीज व्यूज। कभी कभी जिंदगी में याद दिलाई देती है कि हर ब्यूटीफुल चीज ना सामने स्क्रीन पर नहीं होती है रे, कुछ नजारे बस तब मिलते हैं जब हम थोड़ी देर के लिए सर उठा के आसमान की ओर देखते हैं। क्या बात है यार।

0: और झुमका।
1: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.

रहा तू। ऐसे गाना गा के तो आप मना ही सकते हैं, अपने पार्टनर को जता सकते हैं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, बट अगर वो चाहे तो आप उसको लेकर जा सकते हैं नेशनल ईव डे पर, मतलब नेशनल डे ईव पर। व्हाई? एक चीज मुझे सिंगापुर की हमेशा बहुत पसंद आती है, यहाँ पे सेलिब्रेशन ना सिर्फ इवेंट नहीं होते हैं, पूरा शहर उनका हिस्सा बन जाता है। तो व्हाई नॉट टू टेक योर पार्टनर विथ योर सेलिब्रेशन मोड में, है ना? नेशनल डे कुछ ऐसा ही फील करवा रहा है आपको। अगर आप नेशनल डे पर फायरवर्क्स देखने के लिए, फैमिली के साथ आउटिंग करने के लिए या मरीना बे की तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अच्छी खबर है मेरे पास। कम्यूटर्स की कन्वीनियंस के लिए MRT और सिलेक्टेड बस सर्विसेज जो है ना, उनके ऑपरेटिंग आवर्स जो है वो एक्सटेंड किए जा रहे हैं। एक्सटेंड कर रही हूं मैं खींच के, यस, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ साथ एक्सटेंडेड आवर्स भी मिल रहे हैं। अब इससे क्या होगा, सेलिब्रेशन के बाद घर लौटना आसान हो जाएगा। यस, सो अथॉरिटीज जो है वो एडवाइस कर रही हैं, उन्होंने किया भी है कि अगर पॉसिबल हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए और अपनी जर्नी थोड़ी पहले प्लान कर लीजिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्राउड बहुत ज्यादा होने वाला है। वो तो होगा ही भाई, NDP है, एमिंग थोड़ी किसी की बर्थडे पार्टी में, सिर्फ बर्थडे पार्टी में आजकल काफी क्राउड होता है। ऑनेस्टली एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन वही होता है जहाँ पे यादें बहुत लंबी हो और घर जाने की टेंशन छोटी सी। सो संभाल के रखा वो फूल मेरा, तू ले लेना और वो शायद जिसमें आपके आपको याद कर लेना, और उसके बाद आ जाना NDP में।

0: us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: नंबर्स मुझे बचपन से बहुत कम पसंद है, लाइक मैथ्स। अब देखती हूँ तो लगता है कोई अच्छा टीचर मिल जाता तो शायद मैथ्स मेरी अच्छी हो जाती, तो नंबर्स मुझे पसंद आ रहे हैं। एनीवे, नंबर की बात इसलिए हो रही है बिकॉज नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं, कई बार उनके पीछे ना हजारों कहानियां होती हैं। व्हाई आई एम बीइंग सो ड्रामेटिक, क्योंकि नंबर्स यहाँ पर एक नई जिंदगी की शुरुआत की बात करने वाले, किसी के घर की खुशी और कहीं किसी अपने को अलविदा कहने का कोई पल। सिंगापुर की लेटेस्ट बर्थ और डेथ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 2025 में 29,864 बेबीज का जन्म हुआ और ये पिछले साल के मुकाबले 11.4% कम है। कैन यू बिलीव दैट, 11.4% कम। और वहीं अगर इसके उल्टा हम डेथ मार्जिन देखें, डेथ का नंबर देखें, तो लगभग स्टेबल ही रहा है, 26,499। इसका मतलब है कि बर्थ और डेथ के बीच का जो नेचुरल इंक्रीज है पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। अब एक्सपर्ट्स जो कि हमेशा ही आते हैं कुछ ना कुछ कहने के लिए, वो ये कहते हैं कि सिंगापुर की एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग बर्थ रेट जो है वो कंटिन्यूइंग जो है ना ट्रेंड को रिफ्लेक्ट कर रही है, लगातार यही चल रहा है। पता नहीं व्हाई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग अ न्यू फैमिली, अब ये तो भाई वही जाने। लेकिन हर एक स्टैटिक हमें एक बात जरूर बताती है और याद दिलाती है, हर नई जिंदगी एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर जनरेशन किसी शहर का कल लिखती है। तो अगर आप एक नई जनरेशन को इस दुनिया में आने से रोक रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आप इस शहर का कल लिखे जाने से रोक रहे हैं। That's a personal choice, but still, बताना मेरा फर्स्ट, मैंने बता दिया।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी मुग्धा। आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पर। शो की दूसरी आर में आपका बहुत बहुत वेलकम है। दिस इज द बॉलीवुड आर। तो बॉलीवुड आर को हम आर नाम से ही शुरू करेंगे। दिस आर इज डेडिकेटेड टू आर। आर बोले तो रणबीर। आपको पता है बहुत फेमस फ्रेंचाइजी है स्पाई फ्रेंचाइजी YRF की, दैट्स धूम। अगर आपको नहीं पता था तो मैं आपको बता दूं कि धूम 4 में रणबीर को एज अ विलन कास्ट करने की बात आ रही थी। ये श्योर था कि रणबीर जो है वो विलन बनने वाले हैं, पर पता नहीं फॉर सम रीजंस रणबीर ने खुद को इस फिल्म से दूर कर लिया है कि वो विलन नहीं बन रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि स्क्रिप्ट को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं थी, पर मुझे लगता है राम बनने के बाद उनकी लाइफ में काफी क्लैरिटी आ गई है कि अब वो कहीं किसी भी तरह से विलन नहीं बनना चाहते। एनिमल पार्क भी नहीं कर रहे हैं क्या? खैर, वजह चाहे जो भी हो, पर फिलहाल ये बात तो है कि अब हमारी धूम 4 को एक नया चेहरा ढूंढना पड़ेगा विलेन के लिए। भाई को बाइक, स्वैग, स्टंट्स, इन सब के लेवल से मैच करना हर एक के बस की बात नहीं है, पर हम क्यों ना कोई अनकन्वेंशनल चेहरा ढूंढ लें, जैसे कि जिसको किसी ने इमेजिन ना किया हो लेकिन वो विलेन बन जाए। तो कुल मिलाकर के हमें धूम 4 में एक नया विलेन देखने को मिल सकता है। मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना राजकुमार राव को कास्ट कर लिया जाए। मुझे एक सीन याद आ रहा है बरेली की बर्फी का। वहां पे वो जो बाइक से उतरते हैं और जो अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, मुझे लगता है कि वो धूम के लिए बहुत ही अनकन्वेंशनल फेस है, पर मजा बहुत आएगा। इफ उदय चोपड़ा कैन बी अ विलेन, राजकुमार राव से तुम्हें क्या ही कंपेयर करूं। लेट्स ट्राई।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, वेलकम बैक। हाँ, मैं सोचों से बाहर आ चुकी हूँ। बॉलीवुड में सीक्वल्स का सीजन चल रहा है, बहुत वक्त से चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा ये सीजन। वैसे भी तो सीजन खत्म होते हैं, पर इसके ना और आप वापस एक और ऐसा परिवार है जिसके घर की प्रॉब्लम है ना, वो अपनी सी लगती है, कॉमेडी दिल के करीब लगती है, वो लौट के आ रहा है। 2006 की कल्ट क्लासिक कॉमेडी है खोसला का घोसला, उसका सीक्वल बन रहा है, हम सब जानते थे। और खोसला का घोसला 2 में एक फिर से जो फैमिली मेंबर है उनके बारे में बात करेंगे। ओरिजिनल कास्ट के कुछ बहुत ही फेवरेट फेसेस जो है वो तो वापस आ ही रहे हैं, जिसमें अनुपम खेर ऑफ कोर्स वो नहीं रहेंगे तो घोसला किसका बनेगा, क्योंकि वो तो घोसला है। और बोमन ईरानी ऑफ कोर्स, रणवीर शौरी, बाकी बहुत से कलाकार हैं। एक नया मेहमान जो इस में ऐड हो रहा है जिनका नाम है दैट इज दिव्या खोसला। असली की घोसला इज गोइंग टू बी खोसला का घोसला। वाह, पुरानी यादें जो है वो ताजा होंगी, नए कैरेक्टर्स होंगे, फैमिली ड्रामा तो आएगा ही आएगा, वो तो आपको देखने को मिलेगा। फिल्म में रवि किशन भी आ रहे हैं तो भौकाल होगा, भौकाल, जिंदगी झंडवा फिर भी घवंडवा। इसकी तो बहुत जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि बोमन ईरानी और बाकियों से भी ऊपर ये विलन आएंगे, बम बम बोले। खैर, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि खोसला फिल्म जो है, मिनी खोसला का घोसला जो है, इसकी नई कहानी ऑडियंस को पहली फिल्म की तरह कनेक्ट कर पाती है उसके साथ, या ये एक मल्टी स्टारर फिल्म बन के रह जाती है।
2: दिल ने भी तुमको कहीं तो जरूर देखा है।
1: We'll wait and definitely we'll watch.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ,
1: एक आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती है बल्कि लोगों से कनेक्ट करती है। क्या आपकी आवाज में वो मैजिक है, जादू जिसको धूप की जरूरत नहीं है? रेडियो पॉडकास्टिंग या फिर मीडिया की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है जो लेकर आए हैं मस्ती मीडिया अकेडमी सिंगापुर। यहाँ पे सिर्फ आरजे बनना नहीं सिखाते हैं, माइंड इट, बल्कि सीखते हैं कंप्लीट रेडियो प्रोफेशनल बनना। और रेडियो प्रोफेशनल सिर्फ एक आरजे नहीं होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन, माइक्रोफोन टेक्निक्स, स्क्रिप्ट राइटिंग इज द बेसिक पार्ट। तो आप बोलेंगे क्या माइक के सामने आकर के? अब ऐसे हो जाता है बहुत से लोगों के साथ। शो प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, ऑन एयर कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। जब ये सब मिलते हैं तो एक अच्छा आरजे बनता है, समझ में आया? Yes, तो अब चाहे आप बिगिनर हो या अपने पहला मतलब बिगिनर हो और अपना पहला स्टेप लेना चाहते हो या फिर अपनी एक्साइटिंग स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं, मस्ती मीडिया एकेडमी आपको देता है एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहां पे लर्निंग के साथ मिलता है रियल रेडियो एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस। वी हैव डिफरेंट लेवल्स आपके लिए जिन पर काम करके हम आपकी तैयारी कराएंगे, जिनको फॉलो करके हम आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे। वी हैव 3 लेवल्स, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया, वी हैव बेसिक, वी हैव इंटरमीडिएट एंड वी हैव एडवांस लेवल। फ्लेक्सिबल लर्निंग है और हर एक लेवल का अपना एक फी स्ट्रक्चर है। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, दैट इज radiomasti.com.sg। ये हमारी वेबसाइट है, आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और साथ में आप अगर आरजे बनना चाहते हैं तो इस एक्सपीरियंस का मौका जो है आपको कैसे अवेल करना है आपको उस वेबसाइट पे जाकर पता लग जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज में एक ऐसी कहानी है जिसको आपके अंदर कहने का अंदाज है तो शुरू करिए अपनी आरजे जर्नी मस्ती मीडिया अकेडमी सिंगापुर के साथ। एंड एज आई सेड, मोर डिटेल्स आप विजिट कर सकते हैं मस्ती मीडिया अकेडमी सिंगापुर। और क्या पता कल बाकियों के फेवरेट आरजे आप ही बन जाए।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुद्धा के साथ।
1: ट्रस्ट, भरोसा, लेकिन अगर उस भरोसे के बीच में छुपा है कोई धोखा तो गेम कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। वेल, ये रियलिटी शोज में होता है। ओटीटी पर सस्पेंस और स्ट्रैटेजी का एक नया गेम शुरू होने वाला है। इतने गेम चल रहे हैं भाई ओटीटी पर, मैं तो भूल ही गई, पहले एक बिग बॉस हुआ करता था, अब तो पता नहीं कितने लॉकअप से जहां पे लोग कैद हो रहे हैं और अपना अपना अलायंस बना रहे हैं। खैर, द ट्रेटर्स, ट्रेटर्स तो हम जानते हैं, इसका सेकेंड सीजन है एंड सेकेंड सीजन के साथ रिटर्न आ रहे हैं। कौन? ये आएगा प्राइम वीडियो पे और उन्होंने अनाउंस किया है कि इस बार भी करण जौहर ही जो है वो होस्ट के रूप में आपको नजर आएंगे। अब जहां पे सेलिब्रिटीज के बीच में ट्रस्ट, बिट्रेयल, माइंड गेम्स का एक बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन है, करण तो अब उसका पूरा फायदा उठाएंगे। पहले सीजन में ना शो जो है ऑडियंस को काफी बेसिकली कहा जाए तो अटेंशन काफी ग्रैब किया था ऑडियंस का, और अब मेकर्स का कहना है कि ये जो सेकेंड सीजन है ना उसमें गेम और भी बड़ा, चैलेंजेस और भी टफ और ड्रामा और ज्यादा इंटेंस होगा। अगले सीजन में 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स होंगे और वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ इस गेम में उतरेंगे और आपको नजर आएंगे। देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा कि भाई कौन बनेगा मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और कौन निकलेगा सबसे बड़ा प्लेयर, या फिर किसी अपने पर कोई आपने जो भरोसा किया है वो आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: एक क्यूट सी ट्रैवल स्टोरी इमेजिन करिए आप, एक ग्रुप ऑफ टाइनी लिटिल इनी विनी ट्रैवलर्स आपको मिल जाए, मैचिंग येलो जैकेट, सेम टोपी, सेम कोट, और वो सब अपने अपना लगेज संभाल के चल रहे हैं, एंड डेस्टिनेशन है चाइना का स्नोई सिटी हार्बिन। हाय, वेलकम बैक, दिस इज मी मुग्धा, शो के थर्ड एंड द लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, ऐसे फेलो पैसेंजर्स मुझे मिल जाए ना, तो मैं तो जहां तक ये जा रहे हैं वहां तक चली जाऊं इनके साथ साथ। साउथर्न चाइना के ना ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे ठंडी बर्फीली दुनिया देखने निकले, तो इंटरनेट इतना ज्यादा वायरल हो गया इंटरनेट पे इनका ये पूरा लुक कि मैं क्या बताऊं, कोई इग्नोर कर ही नहीं पाया। एंड व्हाई? एक तो इन सब के मैचिंग येलो कोट्स, ओह माय गॉड, दे वर लुकिंग जस्ट सो एडोरेबल, लाइक येलो मिनियंस बनाना टाइप्स, है ना, और बिल्कुल ऑलमोस्ट एक जैसा कद, छोटे बच्चों का कद ऑलमोस्ट एक जैसा, और इनको देख करके ना इनको नाम दे दिया गया नेट पे, दे आर द लिटिल पोटैटोज ऑन टूर। जी हाँ, ये छोटे आलू जो है टूर पे निकले हैं। अब सोचिए, पोटैटोज नॉर्मली किचन में मिलते हैं, लेकिन ये वाले पोटैटोज सूटकेस लेके छट्टी बनाने जा रहे हैं, और ये अपना सूटकेस खुद कैरी कर रहे थे। दीज लिटिल फेलोज, बाय गॉड, हमारे इतने बड़े बड़े बच्चे और बच्चों के पिताजी लोग भी सूटकेस अपना खुद का कैरी नहीं कर पाते। दीज किड्स, एक मिनट, इनको घर से बाहर अकेले जाने किसने दिया? हमारे यहाँ तो मम्मियां हमें अभी अकेले सोलो ट्रैवल पर जाने नहीं देती। क्या बात है, वार्म वेदर वाले साउथर्न चाइना से सीधा स्नोई हार्बिन पहुंचना ना इनके लिए एकदम विंटर वंडरलैंड एडवेंचर है, तभी तो जा रहे हैं। और ये इनकी क्यूट ट्रैवल स्क्वाड जो है ना, ओ गॉड, अगर आप इनको देखेंगे तो आप कहेंगे माय माय, हम कहां हैं और हम यहां क्यों नहीं है, जहां ये हैं। दे आर जस्ट सो अडोरेबल।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: जरा सोचिए, आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, पुरानी दीवार, पुराना कोना, और अचानक हाथ लग जाएगा ऐसे सरप्राइज पर जिसके बारे में आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। मेरे मुझे तो यही निकलेगा। हाय, वेलकम बैक। डरिए मत, चैनल चेंज मत करिए। मैं मुग्धा हूँ एंड दिस इज रेडियो मस्ती। यूके में कपल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 100 साल से भी पुराने घर में उन्हें एक बंद जगह मिली और उस बंद जगह पे एक पुराना गंदा पेंट का डब्बा पड़ा हुआ था। ऑब्वियसली पुराना डब्बा देख कर पहला थॉट क्या आता फॉरन में, ओ माई गॉड, पता नहीं क्या है, हटा दो। इंडिया में जरूर मम्मी कहेंगे कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, इसको वापस रख दो, अगले 100 साल तक उसी कोने में पड़ा रहेगा, आने वाली किसी और पुश्त को मिलेगा। खैर, कपिल ने उस डब्बे को महीनों तक खोला नहीं, डर के मारे। अच्छा, क्योंकि अजीब सी स्मेल आ रही थी उसमें से और वो काफी पुराना लग रहा था, तो जस्ट लेफ्ट इट। लेकिन जब फाइनली हिम्मत करके वो डब्बा खोला, आपको पता है अंदर क्या था? अंदर खजाना था, 1970s के बैंक नोट्स का बंडल जिनकी कीमत ऑलमोस्ट 1,000 pounds से ज्यादा थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पैसा उन्हें तब मिला जब फैमिली के लिए टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट था। सोचिए, किस्मत बॉस, किस्मत, किस्मत नीड्स टू बी परफेक्ट। सरप्राइज मनी है, उन्होंने बिल्स पे किए, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट किए, तो बेसिकली अगर किसी ने किसी भी रीजन से छोड़ा था, रखा था, भूल गया था, ये पैसा उन्हीं को मिला जिनके लिए, जिनको मिलना था और जिनके काम आना था, उन्होंने इसको काम में ले लिया। हम लोग ना घर में कभी कभी पुरानी चीजें देखकर ऐसे कहते हैं, अरे यार इसको फेंक दो, काम का नहीं। नहीं सॉरी, इंडिया में ऐसा कोई मम्मी नहीं कहती है, उनके डब्बे फेंक दो तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है, वो पड़ोसी का भी खाली डब्बा ले आया उठा करके। फॉरन में यूजुअली हम ऐसे अच्छी अच्छी चीजें घर के बाहर रख देते हैं, सेल पर या एवे निकाल के रख देते हैं, कोई ले जाएगा जरूर। वही पुराना डब्बा आपके लिए लॉटरी साबित हो सकता है। तो बेसिकली हमें ये शिक्षा मिलती है कि मम्मी जब पुराने डब्बे इकट्ठा कर रही हूँ तो उनको खोल के पहले देख लें। अगर कुछ निकल जाए तो ठीक, वरना फेंक दें।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, क्या यूनिवर्स मुझे कोई इशारा कर रहा है कि मुझे ट्रैवल पे जाना चाहिए? ट्रैवल प्लान बनाते वक्त ना हम सब क्या चाहते हैं? लोकेशन, फोटोज, रिव्यूज एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, होटल अच्छा है कि नहीं। फिलीपींस में एक ट्रैवलर से यहाँ की एक छोटी सी बुकिंग मिस्टेक हो गई और ऐसी मिस्टेक की अब पूरा इंटरनेट हंस रहा है। वीकेंड गेट अवे के लिए उन्होंने एक सिटी जिसको मेरे ख्याल से बागियो बोलते होंगे, आई एम नॉट फेमिलियर विद द लैंग्वेज एनीवे, तो वहां पे वो स्टे ढूंढ रहे थे और इस महिला ने एक जगह का सोशल मीडिया पेज देखा और सोचा वाओ व्हाट अ परफेक्ट होटल, मैसेज भेज दिया वीकेंड के लिए रूम अवेलेबल है क्या। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब रिप्लाई मिला, मैम हेलो दिस इज अ जेल फॉर वुमेन। है जी हाँ, वो होटल समझ के जहाँ बुकिंग करने की बात कर रही थी वो उस शहर का एक जेल है, फीमेल डॉर्मेट्री। बेचारी ट्रैवलर को जैसे अपनी मिस्टेक समझ में आई तुरंत सॉरी वॉरी बोल के उन्होंने रिप्लाई किया। खैर बाद में जेल अथॉरिटीज ने उनकी परमिशन के बाद ये फनी कॉन्वर्सेशन जो ऑनलाइन शेयर भी कर दिया और नेटिजन ना कॉमेंट्स में फुल कॉमेडी मजे ले रहे हैं भाई। किसी ने कहा कि सिक्योरिटी वहां पे आपको पूरी परफेक्ट मिलेगी, आपका सामान चोरी नहीं होगा, इसने फ्री फूड का भी आप इंजॉयमेंट ले सकते हो, ऐसे जोक बना दिया। लेकिन भाई होटल बुकिंग में एक चीज डबल चेक करना बहुत जरूरी है, नाम पढ़ लो। पर होटल बुकिंग में इसको लिस्ट किसने किया मैं ये पूछना चाहती हूँ। मुझे आज तक कभी कोई जेल नहीं मिली कहीं होटल बुकिंग करते वक्त, मुझे तो होटल ही नहीं मिलते अच्छे, जेल तो कह।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आर

0: अकेलापन रात का तो हम है ना। रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से। कभी मेरे साथ कोई रात
1: गुजार, जोश में रहो। हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: तो बस आज के लिए इतना ही। मस्ती की बातें यहीं पर खत्म होती हैं। दुनिया भर की वो छोटी बड़ी स्टोरीज जो मैं आपको बताना चाहती थी और आपको बता चुकी हूँ, आपके दिन को और इंटरेस्टिंग बना चुकी हूँ, उनको यहीं पर विराम दे रही हूँ। बट अल्प वाला विराम, अल्प विराम इसलिए बिकॉज़ आई विल बी बैक ऑन फ्राइडे। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिया, मैं छोड़ना भी नहीं चाहती। म्यूजिक, बॉलीवुड अपडेट्स, फन फैक्ट्स, बहुत सी कहानियां जिनको सुन के आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए, लाइक दोज लिटिल येलो मिनियंस बनाना। ये सब लेकर के ना मैं आ जाती हूँ आपके लिए और मस्ती हैंग आउट। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम विथ मी। अब आप चाहे सिंगापुर से सुन रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने से सुन रहे हो, बिकॉज वी हैव एन वेरी इंटरेस्टिंग ऐप, ऐप के थ्रू आप हमको कहीं से भी सुन सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं, आप जैसे ही मुझे ज्वाइन करते हैं, हैंग आउट और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। थैंक यू स्कोर स्पेशल बनाने के लिए। दिस इज मी मुग्धा, रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और याद रखिए कि लाइफ में थोड़ी सी मस्ती जरूरी है। मस्ती, बाय, टेक केयर।

0: नचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे। और कहीं कोई जाता है 105 बच्चे।
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो,
4: स्टॉप द म्यूजिक, रेबो सिंग इट। नाचने का मन है
5: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आर जे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
4: I love you, रसना।
3: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musti 24/7 Live.
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे. पर हाँ, तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
3: रात अकेली है। जोश में रहो।
4: 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
5: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
2: टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 PM onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: नाम सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Masti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
2: Only on Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
5: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
6: अर्जुन आएंगे
5: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: Welcome to your chill zone. Musti Music Cafe. Only music, only musti.
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्त रफ्त देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को वो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहाँ काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning.
6: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
7: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: नमस्कार सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट

0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
2: ऑल इज वेल।
1: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: दीपावली बूझ कहीं की।
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: का पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष।
1: थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज़ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: जब वेंसडे वेंसडे जैसा ना लगे तो उसको क्या कहते हैं? उसको फिर भी वेंसडे ही कहते हैं. हेलो हाय वेलकम नमस्ते गुड इवनिंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर 5:00 हो चुके हैं 6 मिनट विच मींस वेंसडे शाम वाली आपकी आवाज यानी कि अंतरा की आवाज आपके कानों तक नहीं आपके दिल तक पहुंच रही है. भाई हम अपने टाइम से बिल्कुल आ जाते हैं. अब चाहे आप वो किसी भी टाइम पे हमको दे दो बता दो हम तो हाजिर हो जाएंगे. वेल यस इट्स वेंसडे बट समहाउ दिस टुडे आज का वेंसडे फील्स लाइक मंडे लाइक एटलीस्ट फॉर मी. क्या ही बताए क्या नहीं ही बताए लेकिन ठीक है यार हर दिन एक जैसा नहीं होता है. कभी कभी वेंसडे भी काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है. आप सोचते कुछ और हो और आपको लगता है कि यार अब तो हम लोग बीचों बीच पहुंच गए हैं इट्स क्वाइट अ कंफर्टेबल पोजिशन अब तो सिर्फ वीकेंड का इंतजार है. बात नहीं सम वीक्स आर लाइक क्रेजी क्रेजी विद अ लॉट ऑफ काम. सो वेल I am trying to calm myself down क्योंकि अब वो वक्त शुरू हो चुका है जो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होता है. एब्सोल्युटली 5 से 8 आपके और मेरे बीच में कोई भी नहीं आने वाला है. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. वेल अच्छे अच्छे गानों के साथ साथ काफी सारी खबरें एंड ऑल ये सारी की सारी चीजें हम जरूर करेंगे. और मैं कल से ये सोच रही हूँ कि मैं इतनी खबरें दे चुकी हूँ क्योंकि मैंने मंडे सुबह किया फिर मंडे शाम को भी मैंने खबरें दी फिर मैंने ट्यूजडे सुबह दी अब मैं वेंसडे शाम को आ गई हूँ. खबर्स बेटर कम टू बी क्या पता मतलब जिस तरह का मेरा ये हफ्ता जा रहा है कल शाम को भी मैं ही आपको यहाँ पे मिल जाऊंगी कोई बड़ी बात नहीं होगी. आई मीन आई एम वेरी क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जब एक साथ आता है ना फ्लो में कोई भी चीज सब एक साथ मेरे बैक टू बैक लग जाती है. बट वेल इसमें नना दक्या कसूर वे कसूर वे कसूर दैट्स द गाना कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. गुड इवनिंग.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
2: Take a break, laugh a little and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
3: Well, खूबसूरत कानों के साथ खूबसूरत आप और खूबसूरत मैं भी. Of course, we all are very, very pretty and nice. Radio Masti 24/7 live पर अंतराप के साथ Midweek Blues बिल्कुल यहाँ पर शुरू हो चुका है. खबरों का सिलसिला भी बिल्कुल यहाँ पर शुरू हो चुका है. ऐसा तो होगा ही नहीं कि भाई किसी एक दिन में कुछ खबरें ना आए. Well, बात कुछ ऐसी है कि रामायण मूवी को लेकर काफी चर्चा चल रहा है. अब वो चर्चा वो इस वजह से है, of course, रणबीर कपूर इज वन ऑफ द हाईलाइट्स. वो उन्होंने कह दिया है सबसे कि मैंने अपनी जिंदगी ही पूरी बदल डाली है जस्ट फॉर दिस वन रोल. एंड होता है, एंड दैट इज व्हाट द एक्टर्स दे गो टू लेंथ एंड लेंथ. किसी एक जो जब उनको उस कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है एंड दे वांट टू गेट इन्वेस्टेड इन इट कम्प्लीटली. दैट्स व्हाट रणबीर कपूर अपेरेंटली हैज डन फॉर दिस. सो वेल, इस बात को लेकर जो है एंड ऑब्वियसली जितने भी हिंदुस्तानी हैं और जितना यू नो इंडियन पब्लिक है, सबकी नजरें बहुत ही ज्यादा यू नो गड़ी हुई है जब ये मूवी रामायण रिलीज होगी. एंड या बात किस तरह बढ़ेगी, कहाँ बढ़ेगी, दैट वी डोंट नो. बट फिलहाल बात कुछ ऐसी है दैट टी सीरीज जो है ना, उन्होंने बैक कर लिया है म्यूजिक राइट्स फॉर द बोथ द पार्ट्स ऑफ रामायण एक 75 करोड़ के रिफंडेबल एडवांस डील में. नाउ दिस कोलैबोरेशन मार्क्स वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट यूनिक राइट्स अग्रीमेंट्स एक इंडियन फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए. भाई भूषण कुमार जी जो है जो करते हैं, मतलब एक बिजनेसमैन का दिमाग ना बहुत ही डिफरेंटली चलता है. सो वेल, वो ये इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि एक रिफंडेबल एडवांस डील की जा रही है. क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ता है. बट वेल, आपको क्या लगता है, आपको कितनी उम्मीद है इस मूवी से, मुझे जरूर बताएं. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल ये गाना सुनते हुए जाए एंड आई विल बी राइट बैक ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. गुड इवनिंग.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: यहाँ देखो जरा मैसेज। एक तो इतना बढ़िया गा रहा हूँ, मैं इतना चीख चीख के गा रही थी क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज्यादा बिजी गया है, एंड इनफैक्ट दिस वीक इज गोइंग क्रेजी बिजी। सलमा जो है वो मेरी जेनिमन कहती है आजकल पत्तियां बुझाने वाली नहीं बल्कि आदमी को ही बुझाने वाली। ओके, नो कॉमेंट्स। हम ट्रैफिक अपडेट की तरफ चलते हैं। 5:29 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। सलमा मैम अपने ना हंसी को रोक के रखा है जैसे तैसे। सो वेल, रोडवर्क्स इस वक्त चल रहे हैं ऑन BKE टूवर्ड्स PIE आफ्टर KJE। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन AYE टूवर्ड्स ट्वास आफ्टर ट्वास वेस्ट रोड। अवॉइड करें लेन नंबर 1। और एक एक्सीडेंट की खबर आई है ऑन AYE टूवर्ड्स ट्वास एट जरोंग पोर्ट रोड एग्जिट। सो वेल, ये था ट्रैफिक का अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज आयुष्मान खुराना की आवाज फ्रॉम द मूवी ड्रीम गर्ल। It's actually a nice song. इसका जो original version है अल्तमाश फरीदी की आवाज में आपने सुना होगा, but this one is also pretty good.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: क्या कुछ नहीं चल रहा है इस दुनिया में दोस्तों, क्या कुछ नहीं चल रहा है आओ आपको बताओ. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मिड वीक ब्लूज. भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी बहुत ही बड़े कंपनी में, मतलब आपका कभी सपना रहा हो और वहां पर एडमिशन चाहिए, तो आप उसका सिस्टम हैक कर लो. आज की डेट में कुछ ऐसी सी नई कहानियां होती हुई जा रही है. ये कहानी सुनो. नाउ दिस इज अबाउट IIT कानपुर. सो एक स्टूडेंट जिसने हैक किया IIT कानपुर का वेबसाइट आफ्टर फेलिंग टू सिक्योर एडमिशन, नाउ ही इज बीइंग ऑफर्ड इंटर्नशिप बाय द सेम IIT कानपुर इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ फेसिंग इमीडिएट पुलिस का एक्शन. सो वेल, कहानी कुछ ऐसी है दैट ये जो स्टूडेंट है हैड रिपोर्टेडली अप्लाइड फॉर IIT कानपुर का न्यूली लॉन्च अंडर ग्रेजुएट का साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम, बट क्लियर हुआ नहीं सिलेक्शन प्रोसेस में उसका. फिर उसने क्या किया, ही ब्रीच्ड इंस्टीट्यूट यानी कि IIT कानपुर का वेबसाइट एंड रिप्लेस्ड पार्ट ऑफ इट विथ अ मैसेज जो कहता था कि साइट इज हैक्ड, ऑल आई नीड इज जस्ट अ फेयर चांस. ही ऑल्सो शेयर्ड स्क्रीनशॉट्स उस ब्रीच का ऑन सोशल मीडिया क्लेमिंग दैट उनका इंटेंशन कुछ चुराने का या डैमेज करने का या फिर मिसयूज डेटा का करने का बिल्कुल भी नहीं था. अकॉर्डिंग टू हिम द हैक वाज मेंट टू डेमोंस्ट्रेट द साइबर सिक्योरिटी का स्किल्स ही बिलीव्ड हैड बीन ओवरलुक्ड ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस. रिपोर्ट्स की मानी जाए तो उन्होंने ये भी कहा ही क्लेम टू हैव एक्सेस्ड सर्टन सिस्टम्स बिलोंगिंग टू IIT मद्रास एज वेल. सो इनिशियली जो IIT कानपुर की पूरी सब ने हक्के बक्के तो रही गए होंगे. इनिशियली उन्होंने कंसिडर किया कि FIR दर्ज करते हैं फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस, विच इज ट्रू, यू कैन नॉट जस्ट डू थिंग्स लाइक दैट, राइट. हाउएवर इंस्टीट्यूट जो है रिपोर्टेडली डिसाइडेड अगेंस्ट टेकिंग इमीडिएट लीगल एक्शन दैट कुड एक्चुअली परमानेंटली डैमेज स्टूडेंट के एकेडमिक एंड प्रोफेशनल फ्यूचर. सो IIT कानपुर के डायरेक्टर महेंद्र अग्रवाल जो है उन्होंने कहा स्टूडेंट का टेक्निकल एबिलिटीज कुड इंस्टेड बी इवैल्यूएटेड एक पॉसिबल इंटर्नशिप के लिए इंस्टीट्यूट के साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर में, एंड इंटर्नशिप वुड प्रोवाइड हिम विद एन अपॉर्चुनिटी टू डेमोंस्ट्रेट अपने स्किल्स इन अ लॉफुल एंड सुपरवाइज्ड एनवायरमेंट. बाद में उन्होंने ये भी कहा कि भाई एडमिशन प्रोसेस कुड नॉट बी रीओपन्ड क्योंकि जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है. अगर वो हम करते हैं तो दैट विल वायलेट एस्टैब्लिश्ड जो लीगल एंड प्रोसीजरल रूल्स हैं. सो वेल ठीक है, आई थिंक ये रास्ता भी सही है, बट व्हाट माय टेक अवे इज दैट देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू थिंक लाइक दिस. एंड जब लीडर्स इस तरह से सोचते हैं ना, मामला जो है काफी सही रहता है, सेटल हो जाता है. ये बात बहुत बिगड़ सकती थी, बच्चे का फ्यूचर भी खराब हो सकता था, बट देन दिस गाय ही टुक अ चांस, ही वेंट ऑल इन एंड हियर द रिजल्ट इज या अभी उसको वहीं पे इंटर्नशिप करने को मिल रहा है. नॉट बैड, नॉट बैड. आई टेल यू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कुछ भी हो रहा है दुनिया में यार. गुड इवनिंग.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh mein raho.
3: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Musti 24/7. Aao, mood change kare.

क्लैश और कलेश कंगना रनौत के साथ वापस से जुड़ चुके हैं। कल ही खबर दी थी, आई थिंक हर शो पे हर दिन के साथ साथ जो है इस बात को आगे लेकर जाया जा रहा है, विच इज गुड। मेरे पास खबरें हैं देने के लिए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ यहाँ पे और चल रहा है ऑफकोर्स मिड वीक ब्लूज। मैं कह रही थी कि कल की डेट में मैंने आपको खबर दी थी दैट हाउ कंगना रनौत जो है उन्होंने हाल ही में हुए इंडिया में जो प्रोटेस्ट जेंजी और इन सबको लेकर काफी अपशब्द जो है वो कहे इंस्टाग्राम पर। आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट दैट बिकॉज बट बेसिकली द वे शी रोट इट एंड द वे द चॉइस ऑफ वर्ड्स वर नॉट दैट ग्रेट, दो शी वॉज यस टॉकिंग अबाउट दैट भाई किस तरह के यू नो भाषा यूज की गई है जेंजी द्वारा एंड ऑल दोज थिंग्स, बट देन या शी डिड नॉट माइंड यूजिंग दैट काइंड ऑफ भाषा हर सेल्फ ऑन द पोस्ट, बट इट्स नॉट अबाउट मी। द थिंग इज दैट अभी उसके बाद क्या हुआ, पूरी की पूरी मीडिया जो है वो उनके खिलाफ जो है खड़ी हो गई कंगना रनौत के इस स्टेटमेंट के बाद, व्हेन शी कॉल्ड द प्रोटेस्टर्स एंड द जेंसीज एंड एवरीबॉडी इस तरह से कॉकरोच की तरह है एंड पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने उनसे कहा गया कि जब उन्होंने इतनी सारी चीजें इंडस्ट्री में देखी हुई है, हाउ शी कैन से सच थिंग्स अबाउट द करंट सिचुएशन। सो वेल, जब लोग पूछते हैं कि भाई सेलिब्रिटीज को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, वो शायद इसी वजह से कहते हैं। हुआ ये कि अब कंगना रनौत ने डाल दिया है एक और वीडियो एंड वो वीडियो में वो मीडिया को स्लैम कर रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई मीडिया तो सिर्फ एक ही तरफ का सब कुछ दिखाती है, वो ये नहीं देखेगी कि मैंने ही मतलब हमारे घर में भी जेंजी है, हमने भी देखा हुआ है, हमने भी ये करा हुआ है। भाई इट्स नाउ फाइट बिटवीन कंगना रनौत एंड मीडिया एंड या ऑफ कोर्स अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अब इंडस्ट्री में भी कई सारे लोग लाइक विशाल ददलानी वो भी खड़े हो गए हैं कि ये जो कंगना रनौत को बैकलैश फेस करना पड़ रहा है ये उन

इनवाइट किया हुआ बैकलैश है। क्या ही बताएंगे, क्या ही करेंगे। वहां पे जो सही जो मुद्दा था वो सॉर्टेड, अब हम मुद्दे से बहुत ही ज्यादा अलग उस पे आ चुके हैं। अब ये कहानी कहां तक जाएगी पता नहीं, बट अगला गाना जो आ रहा है ये आपको जरूर पसंद आएगा। आई मीन इट इज गोइंग टू बी द ओजी वन, एंड बहुत बार मुझे ये कहा जा चुका है कि यार ये इसका जो है ना रिक्रिएटेड वर्जन में चलाया करो, ये गाना अगर प्ले करना हो तो ओरिजिनली प्ले किया करो। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। यस, ये घंटा करते हैं रैप अप।

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर
1: ओला हूँ करते हुए यहाँ पर मैं फिलहाल पहुंच चुकी हूँ. जब मैं ओला हूँ बोलती हूँ तो आपको कौन सा गाना याद आता है बताएं बताएं. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर 6 बजे के उस पार पहुंच चुके हैं एंड मिडवीक ब्लूज चल रहा है. मैं हूँ अंतरा आपके साथ. भाई ये इतना आइकॉनिक ओला हूँ और वही खोसला साहब का घर और खोसला साहब और उनकी फैमिली. What an iconic movie, Khosla Ka Ghosla, Anupam Kher ji and the whole team. In fact, each and every character was so well written and I think पिछले महीने ही मैंने वापस से जो है ये कोसला का घोसला देखी बैठकर. एंड अगेन इट इज वन ऑफ दोज मूवीज की कभी भी बैठ के आपने चालू कर ली हो एंड यू कैन वॉच इट एन नंबर ऑफ टाइम्स. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एंड ऑल दोज थिंग्स. नाउ माय प्रॉब्लम विद आजकल की चीजें इज दैट देखो जो चीज नई नई नई जो है वो तो नहीं आ रही है लेकिन हाँ चीजों के पार्ट टूज बड़े ज्यादा आ रहे हैं. सो घोसला का घोसला पार्ट टू. That is right. इसमें actual वाली खोसला भी अब include हो चुकी है. Yes, दिव्या खोसला, दिव्या कुमार खोसला. वो जो टी सीरीज वाले हमारे भूषण अंकल है ना तो उनकी जो वाइफ है दिव्या कुमार, she's quite pretty by the way. So well, दिव्या खोसला जो है उन्होंने ये कॉमेडी फ्रेंचाइजी खोसला का घोसला 2 जो है ज्वाइन कर लिया है. इसमें इनके साथ वापस से नजर आएंगे हमारे बमन ईरानी एंड अनुपम खेर. आई थिंक The glamour level has gone up for Khosla Ka Ghosla, जो कि original वाले part में उतना ज़्यादा नहीं था. But then I didn't mind at all. I don't know whether this was required or not. And we still don't know that Divya Khosla किस तरह का किरदार निभाने वाली है in this part 2 वाली कहानी. And क्या क्या चीज़ होना. नवीन निश्चल जी आपको याद है उस movie में? ओए होए. And that guy जो उनका secretary बनता. See. When you remember all the characters of the movie, which means the movie was so well written, all the characters were so well written. Hola, ho, hi, hi. So, well, देखते हैं कि क्या होता है. मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि जब आएगा तभी पता चलेगा. But then, yeah, this got me a little excited because I really, really like that movie. लाल के लिए भाई मार्केट में पार्ट टूज एंड रिक्रिएटेड गाने ये दोनों ही एकदम जम के आ रहे हैं. सो हम जम के बजा भी रहे हैं. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. गुड इवनिंग.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change kare.
5: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर। यहाँ पर आपके साथ 6:00 हो चुके हैं 17 मिनट। एंड भाई, स्कैम्स की अगर हम बात करें सिंगापुर में, आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स वी टेल यू दैट किस तरह के स्कैम्स जो है यहाँ पर होते रहते हैं, सो दैट यू आर अवेयर दैट इस तरह की चीज, इस तरह के मैसेज, इस तरह के लिंक्स अगर आपके पास आते हैं या कॉल्स आपके पास आते हैं, यू आर अवेयर ऑफ इट एंड यू विल नॉट फॉल इन दैट ट्रैप। सो वेल, बट एनीवेज, स्कैम्स आजकल जो है दे आर नॉट लिमिटेड बाय सिटी, कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट। इसीलिए उससे लड़ने के लिए कोऑपरेशन भी बॉर्डर्स के पार होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। सो सिंगापुर पुलिस फोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स के FBI, इन दोनों ने अभी साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU टू स्ट्रेंथन देयर जॉइंट फाइट अगेंस्ट ऑनलाइन स्कैम्स, साइबर एनेबल्ड फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो एग्रीमेंट है वो साइंड हाल ही में US एम्बेसी इन सिंगापुर में बाय द SPF ड्यूटी कमिश्नर एंड FBI के क्रिमिनल डिविजन के असिस्टेंट डायरेक्टर। एंड दिस इज नॉट जस्ट पेपर वर्क का पार्टनरशिप, ये जो रिसेंट जॉइंट ऑपरेशन है, बोथ एजेंसीज यूज्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस टू आइडेंटिफाई 54 ऐसे विक्टिम्स and potential victims in Singapore and the US. Together, they helped prevent losses of more than $2.7 million in America and 3,88,000 Singapore dollars here in Singapore. Ye collaboration will now include or be joint operations, faster intelligence sharing, specialized training, coordinated action against scams, jo ki hote rehte hain across the countries. Ye partnership important isliye bhi hai because scam cases may have fallen in Singapore, but the amount involved in it is still huge. 2025 ki I think baat hai, victims lost over 913 million Sing dollars and cryptocurrency alone accounted for about like what, 1/5 of all the scam losses. So yes, authorities jo hai they are getting smarter, technology bhi help kar rahi hai aur international teams jo hai uske saath aa rahi hain, jud rahi hain just like this one. But hamari taraf se bhi simple rule hona chahiye, pause before you pay, verify before you trust and never share your banking details ya OTP under pressure. Kuch bhi ho jaye, verify double, triple, 4 times, any number of times, but कभी भी अपने ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं देना है। लिख लो कहीं पे। तो डांटने पे आ गई, आई एम श्योर यू नो। गुड इवनिंग।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपके साथ मिडवीक ब्लूज में वक्त हो चला है कि आपको सीधा ले चलूं हाथ पकड़ के मेरा चलो चलते हैं ट्रैफिक का अपडेट लेते हैं। हेवी ट्रैफिक आपको इस वक्त मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स इटवर्स बिटवीन BKE एंड थॉमसन रोड। हेवी ट्रैफिक की खबर ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी एट KPE ECP XZ और मिलेगा हेवी ट्रैफिक ऑन SLE टुवर्ड्स BKE between Mandai Road and Ishid. So well, ये था इस घंटे का एकदम भारी भरकम ट्रैफिक अपडेट। Coming up next is बादशाहों के soundtracks से Once Upon a Time रेणुका का फेवरेट गाना। जी हाँ, on Radio Masti 24/7 live. Stay tuned. I will be right back.

Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज.

ऐसी हसीन गुस्ताखियों का जिम्मेवार ठहराया जा रहा है दोस्तों मुझे कि क्या ही बताओ। देखो एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है, कंगना रनौत की वीडियोस देख देख के ना, जो अभी बिकॉज शी इज इन द न्यूज ऑफ कोर्स, मैंने आपको बताया था किस लिए, हिंदी अचानक से बड़ी फर्राटे से निकल रही है मेरी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंशा आपके साथ, और यहाँ पर चल रहा है मिड वीक ब्लूज, और मुझसे कहा जा रहा है इतने अच्छे गाने प्ले करती रहोगी तो हम काम ना करें, हम सिर्फ तुम्हारे ये जो गानों में ही खो के रह जाए, ऐसा कैसे है? मतलब अब ऐसा कोई कहता है तो फिर आपको ना एक स्माइल भी आती है, फिर आपको लगता है कि यार कोई नहीं यार, हसीन गलतियां है ये कर लेनी चाहिए, है ना। सो व्होएवर रोट मी दैट, होप दैट पर्सन गॉट द आंसर एज वेल। बट वेल भाई, टेक्नोलॉजी का जो है अपडेट जगह जगह से आ रहा है। कल मैंने आपको बताया था गूगल जो है दे आर काइंड ऑफ एक वीडियो सेल्फी साइन इन जो है उसके तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है नेक्स्ट अपडेट में, दैट लाइक अगर आपको फोगॉट पासवर्ड हो गया तो फोगॉट पासवर्ड के बाद एक रिकवरी मेथड होता है जो कि या तो वो आपका फोन नंबर होता है या तो फिर कहता है कि आपका कोई जो रिकवरी ईमेल आईडी है उधर हम भेज देंगे लिंक, वहां से कर लेना। अब इन दोनों में से जब दोनों ही नहीं होंगे तो फिर क्या किया जाए, तो वहां पे आ जाएगा कि भाई आपने अपना एक वीडियो बनाया होगा, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, कि भाई वो वापस से एक वीडियो बना के आप गूगल को बोलो कि देखो ये दोनों इंसान जो है ना वो बिल्कुल सेम है, ठीक है मैच हो गया। नाउ फेसबुक यानी कि मेटा, वो कैसे पीछे रहे? So Meta has announced that Facebook verified में एक free optional batch जो है वो मिलेगा which will let the user confirm they are human by submitting अपना face का scan. Now company ये कह रही है कि ये move is basically is a response to AI making it easier to generate fake content, profiles and messages. So the new badge jo hai, it is meant to signal that ek sahi real insaan jo hai is profile ke piche hai, ye koi AI generated aapki koi profile nahi hai. Now this is another big thing right now, okay? Instagram abhi to bahut kam ho gaya hai. There was a point of time there were a lot of AI generated profiles. I mean bahut kareeb se aap unko dekhoge tab jaake aapko samajh mein aata hai ki oh ye to real nahi hai, ye to AI generated wo hai, and it used to look so very real. Jab ye sari cheeze bahut zyada ho gayi to of course there was a step taken us security step ki wajah se wo sare ke sare jo hai profiles take down kar liye gaye. So Meta ab keh raha hai ki isi tarah se Facebook ko hum bhi is tarah saaf karenge. Yeah, I think hame I am not a robot wale check mark se aage badh jana chahiye. बताओ ये दिन भी देखना था दोस्तों. एक और गाना चलाती हूँ और दो बैक टू बैक गाने चलाऊंगी. इसको भी आपको लगेगा कि यार फिर इसने ऐसे गाने चला दिए कि हमसे ट्यून ऑफ ही नहीं हो रहे हैं. हम नहीं चाहते ना, क्या करोगे ट्यून ऑफ करके, साथ साथ रहो हमारे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ट्यूटर पर।
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.

दिस टाइम आई थिंक पूरा का पूरा रामायण का टीम आर गोइंग रियली रियली बिग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज. किसके ब्लूज है? अब तो मेरे भी उड़ गए. जब शुरू किया था तब मैं ऐसे थी कि थैंक गॉड 5 बज गए हैं, अब 5 से 8 ना मुझे कोई यहाँ पे कोई स्टूडियो में आकर मेरे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मुझे काम नहीं पकड़ाएगा. लाइक it is like that. This is the most stress free zone. एंड इस वक्त जो है कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं, मतलब यहाँ पर आके कर सकता है. मैं आराम से बैठ के गाने एंजॉय करती हूँ, आपसे बातें करती हूँ. सो इट इज एब्सोल्युटली मैजिकल. बट वेल कमिंग बैक टू हमारा रामायण भाई, डेट मिल गई है ट्रेलर के रिलीज की एंड दिस इज बिग बिकॉज सो मच हैज बीन गोइंग ऑन. इस एक मूवी को लेकर इतनी बात हो रही है, स्पेशली विद द काइंड ऑफ माहौल अभी जो है इंडिया में हो रहा है, उसके बाद यू नो इट्स It's a little tricky and a sensitive area as well at the same time. Yogesh ji aa gaye yahan pe, Yogi Bear ko aho ji aho karte hue bilkul tune in kar liya hai. Ye abhi gaadi mein baithe honge aur ja rahe honge ghar, aur isi waqt unko yaad aata hai ki oho ek bar hi bol deta hu, bas thodi der baad ye bye bolne ke usme bhi aayenge, aur beech mein mood kar gaya to mujhe ek gaana bhi pakda denge, iska OG wala version chala dena. Wait, so well bhai, Ranbir Kapoor ki Ramayana, they have announced that film ka much awaited trailer jo hai release kiya jayega July 30th, which is tomorrow. एकदम auspicious ब्रह्म मुहूर्त में इसको रिलीज करेंगे. Now the announcement comes after the trailer का earlier जो postpone हुआ था, with producer Namit Malhotra confirming that the new launch date for the mythological epic is just like around the corner, and it is actually around the corner. So well, I cannot wait because मुझे तो इतना भी पता है कि ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी बहुत सारे लोग बोलेंगे because it's on social media, right? And social media में तो हर किसी के पास राइट होता है कुछ ना कुछ बोलने का, whether it is right or wrong. किसने देखा है और किसने सुना है. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव करते हैं इस घंटे को रैप द अप विद दीज गाना. जी हाँ, गुड इवनिंग.

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को वो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.

बाबा का बर्थडे है, बाबा का बर्थडे है, बाबा का बर्थडे है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतर आपके साथ मिडवीक ब्लूज में 7 बजे के उस पर आप भी पहुंच चुके हैं, सपना आंटी भी पहुंच चुकी है, हम लोग सारे बिल्कुल वेल सेटल्ड है। 1 घंटा और यहाँ पर बाकी है और उसके बाद वापस से मेरा काम शुरू हो जाना है, उसके बीच में जिम भी जाना है। काम डाउन अंतरा, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके भाई, बाबा का बर्थडे है, मनाना तो पड़ेगा ही। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट संजू बाबा। भाई संजू बाबा जो है, जी हाँ, बंदे का ऑरा ना बहुत ही डिफरेंट है एंड यू हैव टू गिव दैट टू हिम। मतलब बैड बॉय वाली जो वाइव है ना, वो इतनी सही आती है ना इसमें, इतनी ज्यादा। इवन धुरंधर में आप देख लो, जब जब संजू बाबा आए हैं स्क्रीन पे, ओहो हो, ओहो, मतलब आग ही लगा दी उन्होंने, है ना। बट एनीवेज, उनके बच्चे जो हैं शहरान और इकरा, बिल्कुल उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने प्यार को दिखाते हुए, जताते हुए, हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट डैड एवरीवन कुड आस्क फॉर, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, सपोर्टिंग मी, इंस्पायरिंग मी एवरी डे, विशिंग यू गुड हेल्थ, एंडलेस हैप्पीनेस। ये तो हुआ भाई, बेटे ने दिया, बेटे ने भी बिल्कुल पोस्ट किया, हैप्पी बर्थडे पापा, थैंक यू ऑलवेज फॉर बीइंग देयर फॉर मी, सपोर्टिंग मी, मेकिंग मी स्माइल, आई एम सो ग्रेटफुल यू आर इन माई लाइफ, आई होप योर बर्थडे इज फिल्ड विद हैप्पीनेस, आई लव यू सो मच पापा। इट इज सो क्यूट। आई मीन I understand why, because I also पहले ना शुरू शुरू में क्या हुआ था कि मैं ना अपनी मम्मी को मेरे अच्छा लगता है कि मैं पोस्ट करती हूँ और उनके बारे में कुछ लिखती हूँ, उनको विश करती हूँ। सो माई डैड यूज टू नोटिस ऑल दैट एंड देन वन फाइन डे ही टेल्स मी, हाँ तुम तो सिर्फ मम्मी को ही विश करती हो सोशल मीडिया पे। ही ऑल्सो वॉन्टेड कि उनके लिए भी मैं करूँ, बट सीधे सीधे कब किसी ने ऐसी चीजें बोली है ना, तो बड़े ही उसमें ऐसा बोला। एंड सिंस देन आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट टिल डेट व्हेन ही इज नॉट अराउंड ऑल्सो कि उनके बर्थडे पर जो है, मैं जो कि आने वाला है इनफैक्ट, तो उनके लिए पोस्ट लिखूं एंड एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट आई गेट वे टू इमोशनल। बट कमिंग बैक टू बाबा का बर्थडे है, बाबा के बर्थडे पे बाबा का गाना प्ले करेंगे। भाई बहुत सारे गाने मेरे जहन में आ रहे थे, एक बार को लगा कि ना ही खलनायक हूं मैं प्ले कर दूं, फिर मुझे याद आया कि कल थर्सडे है, कल तो होना ही है। फिर मेरा हाथ एक और गाने पे पहुंचा और वो वापस से यार 90s का निकला, अब क्या ही करेंगे। बट दिस इज अनदर वन एंड दिस इज द वन आई थिंक शाम के टाइम पे चलेगा। ओजी वाला जी, ओजी वाला ओरिजिनल एंड नॉट द रिक्रिएटेड वर्जन। हैप्पी बर्थडे टू संजय दत्त, यानी कि हमारे संजू बाबा। लेट्स डू सम तम्मा तम्मा।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
2: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
1: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
2: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
3: Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
4: आइए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जी हाँ, आंध्र आपके साथ मिडवीक ब्लूज। आधे घंटे भी निकल गए, बताओ कितनी जल्दी वक्त निकल रहा है। आज जुलाई 29th भी हो गई, कल फिर 30, फिर 31, जुलाई का महीना जो है वो खत्म हो गया है। और मेरे दिमाग में अब यही चल रहा है कि छुट्टी दे दो, छुट्टी पे जाना है। एक वेकेशन तो बनती है, मतलब ऐसा हो जाता है ना, आई थिंक हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और हर कोई, मतलब नॉट ओनली आई थिंक जो एम्प्लॉयड है, जो लाइक घर पे भी इतना सब कुछ काम करते हैं, एवरीबॉडी नीड्स दैट ब्रेक वंस इन अ व्हाइल इन बिटवीन। जहां पर मैं तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मैं और बड़ी होती जा रही हूँ ना, उतना मेरा ये चीज और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है कि नहीं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद यार छुट्टी चाहिए, यार कहीं तो जाना चाहिए ना। जिंदगी अभी नहीं जिएंगे तो कभी जिएंगे? फिर उसके बाद फिर मैं अपना अकाउंट देखती हूँ, फिर लगता है कि नहीं, अंतरा टू सून टू से दिस, पहले इसको थोड़ा सा संभाल ले, उसके बाद तो फिर लगता है कि यार जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलो भाई, घुस जाते हैं, देख लिया जाएगा, फिगर आउट हो जाएगी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मतलब ये जो माइंड एंड हार्ट का गेम है, आप लोग कैसे हैंडल करते हो यार? आई थिंक आई शुड राइट टू डियर मस्ती दिल से आस्किंग द सेम क्वेश्चन, बिकॉज आई एम इन अ डिलेमा माय डियर फ्रेंड्स। बट वेल, एनीवेज, यहाँ ओ माय गॉड, यहाँ पर सपना आती मुझे मिठाइयों के, जो आज वो जापानीज मिठाई सीख के आई है, उसका बहुत ही खूबसूरत से जो है पिक्चर्स भेज रही है, विच इज वेरी गुड। जब जब मुझे जिम जाना होता है, लोग मुझे खाने के ही पिक्चर भेज रहे होते हैं, विच इज वेरी वेरी नाइस। बट हैविंग सेड दैट, भाई मैं तो खबर देने वाली थी, बट देन ये वेकेशन कहना, लास्ट आप कब गए थे वेकेशन, आप मुझे ये बताओ 9158963 पर, वो कहाँ गए थे और कब गए थे। एंड इफ यू हैड रेकमेंड मी कि अंतरा एक बार यहां पर जाओ, जब भी वेकेशन प्लान करो तो यहां जरूर जाओ, तो आप वो कौन सी जगह चूज करोगे मुझे बताने के लिए। एंड देन आई विल टेल यू दैट मेरे जहन में कौन सा वाला जगह है जाने के लिए। और ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी, किसी ने अगर रेनू का वो बताया ना, मैं बता रही हूं कि मैं अगला गाना प्ले कर दूंगी। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: माय डियर लवली लवली पीपल, भाई गूगल मैप्स जो है अगर आपने रखा हुआ है तो यू हैव टू चेक आउट दिस न्यू फीचर फॉर ऑल द पीपल इन सिंगापुर. यस, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मिडवीक ब्लूज आप सुन रहे हैं. मैं हूं अंतरा आपके साथ. एंड ये लेटेस्ट अपडेट है कि गूगल मैप्स जो है अब आपको प्रोवाइड करेगा रियल टाइम अलर्ट्स एंड पर्सनलाइज्ड एस्टिमेट्स MRT के डिसरप्शंस को लेकर. दैट इज राइट एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड वाला जो है चीज उन्होंने जो इंट्रोड्यूस कर रखा है. तो बेसिकली MRT डिस्ट्रप्शन जो होता है वो आपके ट्रैवल प्लान्स में बिल्कुल एक वो होता है, क्योंकि हम सारी चीजें प्लान करके निकलते हैं कि इतना टाइम लगेगा. सो कम्यूटर्स हु आर यूजिंग गूगल मैप्स दे कैन नाउ गेट रियल टाइम के अलर्ट्स एंड पर्सनलाइज्ड एस्टिमेट्स कि उनका कितना जर्नी जो है कितना टाइम लगेगा. LTA लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उन्होंने कहा ये फीचर वॉज लॉन्च्ड ऑन July 29th एंड इज अवेलेबल व्हेन कम्यूटर्स सर्च फॉर अ जर्नी आपके गूगल मैप्स में. That it is what it is. Singapore just kind of does every single thing to make our lives more easier. I mean, seriously, love it completely. If you have not checked it out, you can definitely do, because I definitely am going to do so. Radio Masti 24/7 live. But let's take a musical break and I will be right back.

0: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
1: Tell me if you have noticed this a lot. Radio Masti 24/7 live midweek blues आप सुन रहे हो. मैं कह रही हूँ कि Instagram पे जब आप पोस्ट डालते हो, कभी आपने देखा है कि पोस्ट डालो तो काफी सारे लोग जो है उसको लाइक नहीं करते, लेकिन वो देख रहे होते हैं, लाइक देखेंगे बट लाइक नहीं करेंगे. You get my point, right? But stories डालो तो stories देखते हैं. अब उसमें उनका हवस नहीं चलता क्योंकि अगर आपने जैसे स्टोरी को लाइक किया तो फिर वो तो वहां पे आ ही जाता है ना, हमको पता चल जाता है कि इस बंदे ने प्यार भेजा है हमको. बट फिर आप स्टॉक कैसे करोगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नजर रखने के लिए सिर्फ दूर दूर से ऐसे. सो वेल एनीवेज, इंस्टाग्राम के बॉस एडम मुसेरी जो है, ही हैज रिवील्ड व्हाट रियली हैपेंस व्हेन यू एक्सीडेंटली लाइक किसी का ओल्ड पोस्ट व्हाइल स्क्रॉलिंग थ्रू देयर प्रोफाइल. कई सारे लोग देखते हैं कि अरे इसकी कुंडली तो मैं निकालता हूं, पहुंच गया उसके प्रोफाइल या पेज पर और एक्सीडेंटली जो है आपने उसको लाइक कर दिया, बट फिर आपने उसको हटा लिया कि अरे अरे अरे मुझे तो बताना नहीं था कि मैंने उसको देखा एंड ऑल दोस थिंग्स. नाउ ही एक्सप्लेन्ड दैट ऑल्दो द इन ऐप नोटिफिकेशन डिसअपीयर्स अगर आप उसको अनलाइक कर देते हो क्विकली, बट एक पुश नोटिफिकेशन में स्टिल अपीयर if the other person has unka alert enabled. Whether they actually see it depends on the notification ka settings unka and the timing, meaning aapka accidental like is not always as uninvisible as you might hope. That is right, that is right. Radio Masti 24/7 live, but yeah, satark ho jao. Ye jo tum dekh rahe hote ho na, yeah, sabne kya hota hai, please aise mat bolo ki koi ye wali harkat nahi karta, har kisi ne kar rakha. Are main batati hu, batana zara uska user id kya hai, fir uske baad fir jaakar dekhkar, pehle jo hai wo Facebook pe karte the, ab wo Instagram pe kar rahe hain. Ab dheere dheere jab ye generation Instagram se bhag jayegi to fir Instagram will become the new Facebook. Which almost it feels like it, right? At times. Radio Basti 24/7 live. Let's go mast magan with the agla gana.

रेडियो मसी 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ। यस अभी तक थी, वापस से कल सुबह आना है, बट हाँ जल्दी नहीं आना है, वो नुपुर का काम है थर्सडे को, उसको आना होता है थर्सडे को एकदम सवेरे, वेंसडे और थर्सडे दोनों दिन सवेरे सवेरे। बट यस कल आपसे मुलाकात होगी मेरी मस्ती 90s मिक्स टेप पर, और कल आपसे मुलाकात मेरी होगी। मुझे ना बहुत ही ज्यादा सॉलिड वाली फीलिंग आ रही है कि एंड यू नो इट, यू नो कि जब ऐसा जो तूफान जो है जब आपकी जिंदगी में आ रहा होता है ना, आपको ना पहले से हल्की सी एक जो है ना आपका बॉडी स्टार्ट्स टेलिंग यू कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। सो लेट मी नॉट से इट, बिकॉज ऐसे कहते हैं ना कि इफ यू से इट इट एक्चुअली माइट हैपन, सो लेट मी नॉट से इट। सो आई विल कैच अप विथ यू टुमारो। कल है हमारा दोस्ती दिवस, फ्रेंडशिप डे, और मस्ती 90s मिक्स टेप पे मिलेंगे और बहुत सारी 90s के गाने और बातें करेंगे, है ना। Let us wrap up on that note and let me just go now, है ना, without dreaming about any more food. मुझे मतलब आज invite आया कहीं पे जाने का, आप मेरी sincerity को दाद देना चाहेंगे यहाँ पर, जब मैंने कहा कि नहीं

0: I have to go to gym.
1: I said no
0: to good food. आप देख रहे हो क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है. Bye bye, take care, good night. I'll go, I'll see you tomorrow.
2: लौट के आया उड़ता पंछी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज.

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: मुस्कुराना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या दिन रात है।
1: ओहो

0: बोलो बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

तुम्हारे।

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल कर रहा हूं मैं आपका हमराही समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। लेजेंड्स के सफर पर ले जाने आया हूं आपको, एक ऐसा सफर जहां आपको कुछ ऐसे अचीवर्स की कहानी मैं सुनाता हूं जो बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं, जो मोटिवेट करते हैं हमें। उनकी जिंदगी की कहानी कहने में भी सुकून है और सुनने में भी सुकून है। एक मुस्कुराहट के साथ हौसला परमानेंट एलिमेंट होता है इन कहानियों में। तो आज की कहानी एक कविता से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस शख्स की बात आपसे कहना चाहता हूं उनकी कहानी हम सब ने सुनी है, उनके नाम से हम सब वाकिफ हैं, मगर कहने को शब्द कम पड़ते हैं। मैं आपको उनका नाम बहुत जल्द बताऊंगा, पहले ये सुनिए। ट्यूनिशिया में कुआं है, कहते हैं उसका पानी धरती के अंदर ही अंदर उस पवित्र कुएं से जुड़ा है जो मक्का में है। मैंने तो ये भी सुना है कि धरती के अंदर ही अंदर हर कुएं का पानी हर कुएं से जुड़ा है। कुएं की कहानी इसलिए क्योंकि कुछ कहानियां कुएं से शुरू होती हैं। ये उन दिनों की बात है जब लोग कुओं से पानी भरा करते थे। कुछ लोगों को वहां से पानी भरने नहीं दिया करते थे, चीजों को छूने नहीं दिया करते थे, लोगों के छू जाने से भी बचा करते थे, जब लोग ह्यूमन होने के बजाय कास्ट हुआ करते थे। मैं उन्हीं दिनों की कहानी आपको सुनाने वाला हूं, क्योंकि उन्हीं लोगों में से जो कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी के शिकार थे कुछ निकले और इन सब माल प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक ऐसी इबारत लिख दी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाई और सोसाइटी की ये सब बुराइयां बन गईं अपराध। कोई भी अगर किसी आदमी के साथ ऐसा बिहेव करेगा तो उसे सजा मिलेगी। और उनका नाम था, जिसे हम बहुत मान से लेते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर। तो क्या आप तैयार हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को छूने के लिए मेरे साथ? क्या कहा? हाँ, तो बस फिर देर किस बात की, झटपट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और मैं बाबा साहब के किस्सों के साथ आपका इंतजार करूंगा रेडियो मसी 24/7 लाइव की इस महफिल में। नाम है जिसका लेजेंड्स

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behan aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस
4: का। अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है, टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh Mehra.
5: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं, सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
6: कबीर दास जी कहकर गए, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। यानी अगर तुम अपर कास्ट में पैदा हुए हो तो अलग तरीके से क्यों नहीं आए हो, उसी तरह से क्यों जन्मे हो जैसे हम सब जन्मे। एकदम सटीक बात है, एकदम सलीके से कही हुई बात। कबीर दास जी के इस दोहे के साथ लेजेंड्स अचीवर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं समर, मिलता हूं रेडियो 24/7 लाइव पर। आज भीमराव अम्बेडकर साहब की कहानी आप तक लेकर आया हूं। भीमराव अम्बेडकर भी एक छोटी कास्ट महार में पैदा हुए, लिहाजा उन्हें भी इस छुआछूत की बुराई का शिकार होना पड़ा। स्कूल में पढ़ने जरूर जाया करते थे, मगर प्यास लगने पर उन्हें कोई पानी नहीं पिलाता था, क्योंकि वो पानी के बर्तन को छू नहीं सकते थे, ऊपर से पानी पिलाया जाता था। ये काम ऊंची जाति के पियोन किया करते थे, और जिस दिन वो न आए उस दिन भीमराव अम्बेडकर और उनके दलित साथी पूरा दिन प्यासे रह जाया करते थे। इसी प्यास ने उन्हें एक महान आदमी बना दिया, क्योंकि उन्होंने दूसरों के प्यासे कंठों की चिंता की अपनी प्यास के बजाय। समाज का जो रूप मैं आपको दिखा रहा हूं वो 1890s का दौर था। साल 1891 में 14 अप्रैल के दिन भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। ईस्ट इंडिया कंपनी के मऊ छावनी के मिलिट्री स्कूल में एक हेडमास्टर थे वो। मऊ छावनी मध्य प्रदेश में थी। रामजी का पद सूबेदार मेजर का हुआ करता था। माँ का नाम था भीमबाई, जिनके नाम पर भीमराव अंबेडकर का नाम रखा गया। भीमबाई के फादर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही मुलाजिम थे। बेसिकली ये लोग महाराष्ट्र के रहने वाले थे, एक मराठी परिवार था, आज के महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंबावाड़े के रहने वाले थे। तो बहरहाल भीमबाई और रामजी के कुल 14 संतानें हुई, और इन सब में सबसे छोटे थे भीमराव। बीमारियां, महामारियां और जाने किन परिस्थितियों की वजह से 14 में से सिर्फ 5 बच्चे ही सरवाइव कर पाए। ये थे 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव, और 2 बेटियां मंजुला और तुलसा। भीमराव जी ने इस पूरे परिवार को एक अलग ही स्तर दिला दिया, न सिर्फ अपने समाज, अपने शहर, राज्य या देश में, बल्कि पूरे विश्व में। लेकिन क्योंकि इनके पिता भी पढ़े लिखे थे, कबीरपंथी थे, यानी कबीर दास जी को मानने वाले थे, उनकी फिलॉसफी के फॉलोअर थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, स्कूल भेजा। हालांकि स्कूल में कुल 5-6 बच्चे थे जो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। उन सबको क्लास से अलग बैठाया जाता था, बैठने को अपने घर से टाट का टुकड़ा वो लोग लेकर जाया करते थे, कुछ छू नहीं सकते थे, मास्टर जी उनके पास नहीं आते थे, उनकी नोटबुक चेक नहीं करते थे, पानी भी पियोन ही पिलाया करता था, जो मैंने आपको बताया, अगर वो ना आए तो प्यासे रहना पड़ता था। एक दफा बड़े हो जाने पर बाबा साहेब ने अपने इस दुख को कुछ यूं लिखा, नो पियन नो वाटर। लेकिन इसे पढ़कर और आपको सुनाकर मेरी आंखों में पानी आ गया है। क्या दिन थे वो, किस परिस्थिति से गुजरे। चलिए यहां पर एक भीगा भागा सा ब्रेक ले लेते हैं, मैं मिलता हूँ आपको इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कहानी जारी रखूंगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आप हैं समर के साथ लेजेंड सुनते हुए।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
3: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर, हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू रात।

होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न ला

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। इसके माने हैं, एक ही परमात्मा से हम सब जन्मे हैं, बस सबकी देह अलग है। आत्मा सभी में एक है, फिर कैसी छुआछूत जब देह के अंदर सब कुछ एक जैसा ही है। एक बार फिर से कबीरदास जी के इस दोहे के साथ लौटा हूँ, जो जाने कब से यही बात कह रहे थे कि हम सब एक हैं, लेकिन हम इंसानों ने कभी से माना। यही बात भीमराव अंबेडकर साहब को समझ आ रही थी। पिता थे कबीरपंथी, हालांकि आगे चलकर पिताजी से उनके रिलीजियस डिफरेंसेस रहे, उन सब की भी बात करेंगे। फिलहाल हम नन्हे भीमराव अंबेडकर के जीवन पर हैं, जो सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये सब उसके बाद की बात है, जब उनके पिता का रिटायरमेंट हो गया। साल था 1894, तब वो महज 3 साल के थे। ये लोग शिफ्ट हो गए महाराष्ट्र के सतारा में। यहीं इनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई, जहां उनको रेस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। 5 बरस के थे तब मां का देहांत हो गया। एक दफा अपने एक भाषण में बाबा साहब अंबेडकर ने बात कही थी कि किसी ज्योतिषी ने उनके होने पर कह दिया था कि यह बच्चा अपनी मां के लिए ठीक नहीं है, और यही हो भी गया, उनकी मां गुजर गई। ऐसे में उनके भाई बहन भी उनसे बहुत चिढ़े और बहुत खफा रहते थे। इस सबके बीच इस बिन मां के बच्चे को बुआ ने पाला पोसा। तो इस तरह की कठिनाइयों ने भीमराव रामजी अम्बेडकर के जीवन की शुरुआती लम्हों को बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन वो पढ़ते रहे। बाबा साहब खुद कहा करते थे कि वो कभी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, मगर उनमें पढ़ने की इच्छा थी। जो मिला पढ़ डाला, चट कर जाते थे किताबों को। और शायद यही वजह रही कि सब भाई बहनों में से सिर्फ भीमराव ही हाई स्कूल में पहुंचे, बाकी सब लोग पिछड़ गए। लेकिन पढ़ाई को उन्होंने सीरियसली लेना शुरू कर दिया, जब उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। क्या था ये इंसिडेंट, ये मैं आपको एक ब्रेक के बाद बताने वाला हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के कुछ किस्सों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ रेडियो 24/7 लाइव के जरिए। आप बस सुनते रहिए लेजेंड्स समर के साथ।
2: न जाने कितनी यादें इनका पीछा करती होंगी, और इनकी जिंदगी में सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं होता। डैडी, इसी ख्याल पर शालू ने एक नज़्म लिखी है, वो सुनिए।
3: सुनाओ बेटे।

0: ही कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: हाँ जी, स्वागत है आप सभी का रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स, में हूँ समर आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिनका नाम ही उनकी पहचान है। उनके बारे में बाकी कितने ही डॉक्यूमेंट लिए जाए, क्योंकि उन्होंने खुद हमारे लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जो हमारी पहचान है, हमारा वजूद है, संविधान। हाँ जी, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की बात आज हम कर रहे हैं। राम जी सकपाल यानी बाबा साहेब के पिता एक बहुत बड़े कबीर भक्त थे, जो मैंने आपको बताया। उनके घर में शाम को हर रोज भगवान की दियाबाती होती थी और आरती के बजाय संतों के भजन गाए जाते थे। मराठी पोएट्स संत तुकाराम और मुक्तेश्वर के कबीर के भजन गाए जाते थे। ऐसे में भीमराव भी यही सीख रहे थे। उनकी रिलीजियस विचारधारा भी बदल रही थी। वो एथीस्ट या कम्युनिस्ट बन रहे थे ये तो मालूम नहीं, मगर साल 1956 में 1956 में अपनी मौत से कुछ लम्हे पहले वो कबीर को गुनगुना रहे थे, चल कबीर तेरा भवसागर डेरा। उन्होंने खुद लिखा भी, आई वॉज बॉर्न हिंदू बट आई विल नॉट डाई हिंदू। हालांकि उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया और दलितों के लिए एक अलग धर्म की परिभाषा सेट की, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। खैर साहब, माँ की मौत के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। इस बात से और भी ज्यादा आहत हो गए भीमराव। उनका बिल्कुल पढ़ाई का जी नहीं करता था। पिता कहते पढ़ लो, वो नहीं पढ़ते थे। और जब भी उनकी स्टेप मदर, उनकी सौतेली माँ, उनकी माँ के ऑर्नामेंट्स या कपड़े पहनती तो भीमराव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते, दुखी हो जाते। वो घर से भाग जाने की सोचने लगते। उन्होंने सोचा वो बॉम्बे चले जाएंगे और किसी कपड़ा मिल में काम कर लेंगे, पर घर में नहीं रहेंगे। लेकिन उसके लिए टिकट चाहिए होता और टिकट के लिए पैसे। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बुआ के पर्स से पैसे चुरा लेंगे। पैसे चुराने लगे और पर्स खोला तो उसमें बहुत कम पैसे थे। उनको बहुत दुख हुआ, बहुत रिग्रेट हुआ, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो खूब पढ़ेंगे और कुछ अच्छा काम करेंगे। और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एक और वाकया जिसने उनकी लाइफ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला और अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी काम करने के इरादे को मजबूत किया, मैं बताऊंगा आपको एक ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए लेजेंड्स समर के साथ।

जुलाई पर समर के साथ। आज मैं आपको बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के कुछ लम्हे चुरा कर सुना रहा हूँ। चुरा कर क्यों, ये तो कई किताबों में, बस मैं चुन कर लाया हूँ। मैं अपने शब्द करेक्ट कर लेता हूँ, चुरा कर नहीं, चुन कर लाया हूँ। आपको ये शो कैसा लग रहा है, आप इन किस्सों से कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं, मुझे सब कुछ बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। हाँ, तो मैं आपको अम्बेडकर साहब के उस किस्से का जिक्र करने वाला था जिसने बहुत डीप इनसाइट तक उन्हें प्रभावित किया। ये बात तब की है जब उनके पिता रिटायरमेंट के बाद कोरेगांव में एक क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। उनका परिवार सतारा में था तो पिता ने कहा गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आ जाओ कोरेगांव। उस वक्त भीमराव 9 साल के थे, अपने बड़े भाई और एक भतीजे के साथ पिता के पास छुट्टियां बिताने निकल पड़े। वो तय हुआ कि सतारा से ट्रेन पकड़ी जाएगी, लेकिन चूंकि पहली बार ट्रेन का सफर तय करना था तो ऐसे कैसे चले जाते। इंग्लिश बाबुओं जैसी शर्ट लाई गई, नए नए जूते लाए गए, नई चमकदार नकदार टोपी, गोटेदार रेशमी धोतियां पहनी और तब ट्रेन में इठलाते हुए बाबू साहबों की तरह वो चढ़ गए। अच्छा, से पहले स्टेशन पर एक गिलास शिकंजी भी पी थी उन्होंने। ट्रेन की यात्रा बड़ी मजेदार रही। छुक छुक छुक छुक चलता भाप का इंजन, सीटी बजाता हुआ, खिड़की से आती हवा, ऐसा सफर पहले कभी नहीं किया था उन्होंने। मैसूर रेलवे स्टेशन पर उतरे जहां से कोरेगांव जाना था, तो उन्होंने देखा कि उनको लेने कोई स्टेशन नहीं पहुंचा है। अब डर लगने लगा, सारा मजा काफूर हो गया। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बड़े भाई के साथ स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे, उसे सारा माजरा बताया। उसने उनको प्यार से कहा कि यहाँ से बैलगाड़ियां जाती हैं जो कोरेगांव ले जाती हैं, पहुंच जाओ, सभी ऐसे ही जाते हैं। फिर उसने और ज्यादा पूछताछ करनी शुरू की कि कहां से आए हो, किसके पास जाना है। तब स्टेशन मास्टर को मालूम हुआ कि ये लोग लोअर कास्ट के हैं। बस वहीं स्टेशन मास्टर के तेवर बदल गए, उसने उनको भगा दिया। वो उनको कोई ब्राह्मण यानी अपर कास्ट के लड़के समझा था, उनके कपड़ों और बात करने के लहजे से ऐसे लगता था। खैर साहब, बाहर आए स्टेशन के तो क्या हुआ, एक ब्रेक के बाद बताता हूँ, मेरा इंतजार कीजिएगा, अभी कहानी में थोड़ा और दर्द है। हाँ, एक अलग सी टीस है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम आज के जमाने में रहने वाले लोग इस दर्द को उस तरह से कहां महसूस कर पाएंगे। जिसने इसे झेला है वो जानता है। मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर भीमराव अंबेडकर की पूरी कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। बाबा साहेब की कहानी सुनते रहिए मेरी सुबानी।

धड़कन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आप सुन रहे हैं, मैं हूं समर और मैं सुना रहा था आपको कहानी भीमराव अंबेडकर साहब की, अ सोशल रिफॉर्मर भीमराव अंबेडकर। अपने पिताजी के साथ कोरेगांव में छुट्टी मनाने के लिए ट्रेन की यात्रा करके भाई और भतीजे के साथ मैसूर रेलवे स्टेशन वो पहुंच गए। स्टेशन मास्टर को जो ही मालूम हुआ कि वो लोग लोअर कास्ट के हैं तो उन्हें धुतकार कर भगा दिया। तीनों लोग पहुंच गए बाहर, ये जानकर कि वो लोग नीची जात के हैं कोई भी गाड़ीवान उन्हें अपनी बैलगाड़ी में बिठाने को राजी नहीं हुआ। बहुत मिन्नतें करने पर एक तैयार हुआ, लेकिन उसने भी शर्त रखी कि वो गाड़ी नहीं चलाएगा, बैल उनको हांकने होंगे, अलबत्ता वो पैदल पैदल नीचे बैलगाड़ी के साथ चल लेगा। बताइए कितनी हैरानी की बात है। खैर साहब, घर पहुंचे तो पिताजी इनको आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई सूचना ही नहीं थी कि ये लोग आ रहे हैं। वो चिट्ठी जो इन लोगों ने अपने पिताजी को अपने आने की खबर देने को लिखी थी वो उन तक पहुंची ही नहीं थी, उनके पहुंचने के बाद वो चिट्ठी वहां पहुंची थी। खैर उन दिनों साधन सीमित हुआ करते थे, सो ऐसा कई बार हो जाया करता था। घर तो पहुंच गए वो, लेकिन भीमराव के नन्हे दिल में ये बातें घर कर गईं। उनको छुआछूत और जातिवाद से नफरत होने लगी, वो इसके खिलाफ कुछ करने की सोचने लगे। इन्हीं सब मुसीबतों से जूझते हुए ये अपने एक ब्राह्मण मास्टर जी से इंस्पायर हुए और उन्होंने अपना सरनेम बदलकर भीमराव अंबावाड़ीकर कर लिया, यानी सकपाल हटा लिया, अपने गांव अंबावाड़ी के नाम पर रख लिया अंबावाड़ीकर। इसके बाद और इसमें बदलाव हुए और इसे अंबेडकर कर लिया। इसके बाद इनकी पूरी फैमिली बॉम्बे चली आई, जहां भीमराव अंबेडकर को फेमस एल्फिंस्टन कॉलेज में हाई स्कूल में दाखिला मिल गया। वो अपनी कम्युनिटी में पहले पर्सन थे जिन्हें इस तरह का मौका मिला। मुंबई में परेल इलाके के एक कमरे के घर में ये लोग रहा करते थे, एक कमरे का घर था वो। दिन भर घर में इतने मेंबर्स होते, शोर शराबा होता, भीमराव पढ़ नहीं पाते थे, तो इनके पिताजी इन्हें रात के 2 बजे उठा दिया करते थे, तब बहुत शांति हुआ करती थी। सब गुप्त अंधेरे की ओर जाते हुए नींद में गुम होते थे और भीमराव किताबों में उजाला खोजते थे। उनके पिताजी रामजी सकपाल ने बहुत मेहनत की इस सब में, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि बाबा साहेब ने एक बार शिकायती अंदाज में एक स्पीच में कहा था कि मेरे पिताजी को मेरे जन्म की तारीख भी याद नहीं थी, उन्होंने अंदाजे से 14 अप्रैल लिखवा दी, बस ये याद था कि मैं रात को 12 बजे पैदा हुआ था। खैर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती हम सब 14 अप्रैल को मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के उस पार बाबा साहब के जीवन की कुछ और पहलुओं को, कुछ और घटनाओं को और किस्सों को लेकर आऊंगा मैं। आप सुनते रहिएगा समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
2: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। गोल सा चेहरा, गोल चश्मा, भरा पूरा गदबदाया सा बदन, पैंट कोट पहने एलीट अंदाज में बाबा साहिब अम्बेडकर, यही तस्वीर सामने आती है ना। सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि जिंदगी इतनी खराब गुजरी थी उनकी, लेकिन चुपचाप सभी मुसीबतों को पार करते रहे वो और आगे बढ़ते रहे। हाई स्कूल के बाद जब बॉम्बे कॉलेज में दाखिला लिया उन्होंने, तो वहाँ उनको मिले बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजी राव तृतीय, सयाजी राव थर्ड। बाबा साहेब वहाँ बीए करने आए थे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में। महाराज सयाजी राव जी सोशल रिफॉर्मर थे, वो अनटचेबिलिटी जैसी बुराइयां दूर करना चाहते थे। वो बाबा साहेब की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और उनकी आगे की स्टडीज को उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया। आगे की स्टडीज भी कहां की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन एक शर्त थी कि पढ़ाई पूरी होने के बाद ये बड़ौदा रियासत में ही काम करेंगे। कोलंबिया से एमए करने के बाद ये लंदन पहुंचे, वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स पढ़ने के साथ साथ लॉ भी करने लगे। बाबा साहेब लंदन में दिन दिन भर लाइब्रेरी में बैठे बस पढ़ते ही रहते थे। एक दिन वो चुपके से ब्रेड का एक पीस खा रहे थे, लाइब्रेरी ने देखा और उन पर चिल्लाया कि वो कैफेटेरिया में जाकर क्यों नहीं खाते, ये कोई जगह है, चुपके चुपके खा रहे हो, अगर यही तुमने फिर से किया तो फाइन देना होगा और साथ ही मेंबरशिप भी खत्म कर दी जाएगी तुम्हारी। बाबा साहेब बहुत डर गए, उन्होंने लाइब्रेरियन से माफी मांगी और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लंच कर सकूं, इसलिए यहां बैठकर पढ़ता रहता हूं, आज भूख लगी तो ये ब्रेड खा ली, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। लाइब्रेरियन ने यह सुना तो बड़ा दुखी हुआ और बोला, आज से तुम यहां लाइब्रेरी में दिन भर नहीं बैठोगे, लंच के वक्त मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे और मेरे साथ मेरा लंच शेयर करोगे। मेरे दिमाग में ये कहानी पढ़कर यही आया कि भले लोग हर जगह हैं दुनिया में, घर ठीक से पहचान लें तो। ये लाइब्रेरियन एक ज्यू था, यहूदी था, और ज्यूज के प्रति बाबा साहेब के दिल में हमेशा एक श्रद्धा रही। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौटने के बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: ग्रेट थिंकर सोशल एक्टिविस्ट बाबा साहेब अंबेडकर की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। यह है लेजेंड्स की अचीवर सीरीज। इस वक्त मैं इस बात के साथ शुरू करना चाहूंगा कि बाबा साहेब की पर्सनल लाइब्रेरी कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। जी 50,000 से ज्यादा किताबें किसी के पास उसके घर में हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। किसी की पर्सनल लाइब्रेरी इतनी बड़ी नहीं है। लंदन में थे बाबा साहेब के बीच में ही इनकी स्कॉलरशिप की मियाद खत्म हो गई, साथ ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी छिड़ गया, तो इन्हें अधूरी पढ़ाई छोड़कर आना पड़ा और पहले से ही तय किए गए वादे के मुताबिक बड़ौदा रियासत में काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। महाराजा के मिलिट्री सेक्रेटरी बन गए, लेकिन यहाँ भी अक्सर उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा। नतीजतन यहाँ से उन्होंने ये जॉब छोड़ दिया और बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में सिडनीहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में वो पढ़ाने लगे, लेकिन यहाँ भी इनके साथ वही व्यवहार लोगों ने किया, लोअर कास्ट वाला व्यवहार। यहीं से भीमराव अंबेडकर ने दलित राइट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश लोगों के सामने ये बात रखी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज और अनटचेबल्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए इलेक्शंस में। ये साल था 1919 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट की नींव रखी जा रही थी। तो इस बात के लिए महात्मा गांधी से उनके बहुत मतभेद भी हुए। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंदुओं को भी विभाजित किया जाए, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर साफ कहते थे, इंडियन कास्ट सिस्टम इज नॉट डिविजन ऑफ लेबर बट इट इज डिविजन ऑफ लेबरर्स। बात एकदम सही है। यहाँ उन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर भी निकाला जिसमें वो दलितों के अधिकारों की बात करते थे। इस बीच उन पर नजर पड़ी कोल्हापुर रियासत के महाराज साहब की। उन्होंने उनकी पढ़ाई जारी रखने को उनको स्पॉन्सर किया और लंदन पहुंचा दिया। फिर से वहां से पढ़कर लौटे 1924 में, दलित अधिकारों के लिए वो काम करने लगे। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दलित राइट्स के लिए समझाते रहे। इवन जब इंडिया नेशनल कांग्रेस बना रही थी तब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दलित राइट्स के लिए समझाते रहे। इवन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस मना कर देती थी कुछ डिस्कशन में भाग लेने से, ये आगे बढ़कर जाते। ऐसा ही हुआ जब साइमन कमीशन आया। इन्होंने अपनी दो पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के आगे टिक पाना मुश्किल था, मगर इनका विरोध जारी था। 1932 में जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की घोषणा की तो बापू नाराज हो गए। उन्होंने फास्ट शुरू कर दिया। इन दोनों के बीच यानी बापू और बाबा साहेब के बीच जंग छिड़ गई थी, लेकिन ये विचारों की जंग थी। एक दूसरे का सम्मान दोनों ही किया करते थे, और मैं भी आपका सम्मान करते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बाबा साहेब अम्बेडकर की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी रेडियो 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेलकम बैक। आप सभी सुन रहे हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज। आज बाबा साहेब अंबेडकर की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। विचारों के मतभेद की मैंने बात की। मतभेद कितना भी हो, अगर व्यक्ति इंटेलिजेंट हो और पढ़ा लिखा हो तो बेहद काम का भी होगा और देश हित में बात भी सोचेगा, है ना। बाबा साहेब की प्रतिभा को बड़े गौर से बहुत पहले नेहरू जी नोटिस कर चुके थे। जैसे ही भारत आजाद हुआ, उन्होंने सबसे पहले भीमराव अंबेडकर को झट से लॉ एंड सोशल जस्टिस मिनिस्टर बना दिया। इसके बाद जल्दी ही भारत के संविधान बनाने का जिम्मा इन्हें सौंप दिया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बन गए वो। लाजवाब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को मिला, लेकिन हमारे बाबा साहेब इसमें भी ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि असली डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी के बिना कुछ भी नहीं है। अच्छा, संविधान के निर्माण के दौरान एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ। संविधान में भारत की कौन कौन सी भाषाएं डाली जाएं, इस पर बड़ा बवाल हुआ। बाबा साहेब चाहते थे कि संस्कृत को संविधान में डाला जाए। मेंबर्स ने इसका विरोध किया और उनकी तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी को बोलने को कहा गया। उन्होंने संस्कृत में ही अच्छा खासा ज्ञान भीमराव अंबेडकर साहब को दे दिया। बाबा साहेब कैसे मानते भला शास्त्री जी के साथ शास्त्रार्थ कर सकते थे। इतनी शुद्ध और फ्लुएंट संस्कृत बोली कि सब मुंह फाड़े देखने लगे। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कितनी नॉलेज थी अंबेडकर साहब को। तो चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, मैं ब्रेक के उस पार मिलूंगा।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेल, मैं जानता हूँ कि सब कुछ बाबा साहेब के बारे में कह देना मुश्किल है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में अंबेडकर साहब का एक बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने ही इंडिया में वर्किंग आवर्स को 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया। 14 घंटे, बाप रे, बहुत ज्यादा थे। अंबेडकर साहब की बायोग्राफी आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। वही थे जिन्होंने भारत की दो स्टेट मध्य प्रदेश और बिहार को डिवाइड करके दो बनाने की बात कही थी। हालांकि उनकी बात को माना काफी बाद में गया। वेल, जितना कहूं उतना ही कम है। पढ़ाई के बारे में तो मैं आपको बताना नहीं चाहता कि अपनी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दौरान उन्होंने कितनी पढ़ाई की, कितने कोर्सेज किए। वेल, जब वो महज 14-15 वर्ष के थे तो उनकी शादी हो गई थी रमाबाई से। रमाबाई काफी बीमार रहा करती थी और 1935 में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट खत्म कर दिया बाबा साहेब ने, तो वो बीमार रहने लगे। उन दिनों बॉम्बे गए ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां एक डॉक्टर मिली जो इनके दिल की डॉक्टर बन गई, डॉक्टर शारदा कबीर। इनसे इन्होंने शादी कर ली और नाम बदलकर सविता अम्बेडकर बन गई, लेकिन लोग इन्हें माई के नाम से जानते रहे। माई ने बाबा की बहुत सेवा की और इस तरह से आखिरी सांस तक वो उनके साथ रहीं। बाबा साहेब 1956 में इस दुनिया फानी को अलविदा कह गए, लेकिन दुनिया उन्हें कभी अलविदा नहीं कह पाई। चलते चलते एक किस्सा सुनाऊंगा। भारत की आजादी से पहले बाबा साहेब ने कुछ केसेस भी लड़े अदालत में। एक बार एक दैनिक पेपर में दो केस की खबरें थी। एक जिसमें 28,000 रुपए का मामला था, जो उन दिनों बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, और दूसरा केस था एक मजदूर का जिसकी सैलरी 24 रुपया थी। पहला केस जिन्ना लड़ रहे थे और दूसरा अंबेडकर। जिन्ना बड़े लॉयर थे, मगर एक बड़ी शख्सियत बनकर बाबा साहेब अंबेडकर निकले इस केस के बाद। उनको हमारा सलाम। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाइएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाइएगा, और कुछ ऐसा कर जाइएगा कि लोग आपको याद रखें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: रात अकेली है
4: तो क्या, हम तो आपके

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
2: चेक इट आउट।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो।
2: मेरी आंखें सोती हैं मगर ये दिल जागता है मेरी प्यारी।

था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है। पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था।

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो
2: क्या बात है वाह नशा ये प्यार

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: लव गुरु, तुम्हारे लव का फंडा फेल हो गया, मेरी मोहब्बत का बाप खत्म खेल हो गया।
2: अरे उल्लू की तुम, तुझे नहीं मालूम, अपने सवाल का जवाब ला, कुछ मत कर, जा जा, जा उसके लिए 2 रुपए का गोला।

किसी लड़की की बाहों में झूल जा, दो चार दिन बाद उसको भूल जा। ए, और सुन,

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन चला डाला।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

खिली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती बे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: मेरा तो भरोसा ही उठ गया है। किससे? अलार्म क्लॉक से। कभी भी वक्त पर साथ नहीं देती है, या वो साथ देती है और मुझे सुनाई नहीं देता है। अगर मेरा बर्थडे आए ना और आप मुझे यानी आज से नुपुर को कुछ गिफ्ट करना चाहें, तो डेफिनेटली एक बढ़िया वाली अलार्म क्लॉक कर देना। प्लीज ना। सो हेलो, हाय, मैं आज से नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर वंस अगेन मुलाकात करने आ चुकी है। सुबह सुबह उठने के साथ मैं हर रोज सोचती हूँ कि यार एक मतलब अलग बड़े लेवल की ना, बिल्कुल मतलब मेरे नेबर्स तक को वो जगा दे, ऐसी वाली अलार्म क्लॉक मुझे लेनी है। एंड बाय द टाइम मैं भूल ही जाती हूँ। हाँ, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों के रिमाइंडर लगाने पड़ेंगे यार, ऐसे तो हम सब कुछ भूलते ही जाएंगे। हाँ, एनीवेज, मैं आज पर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर बहुत सारे एंटरटेनमेंट के जो रिमाइंडर्स हैं वो लगाने के लिए आ चुकी है। बैक टू बैक बातें, बैक टू बैक गाने मेरी जान। और हाँ, याद रखना ना, बढ़िया वाली अलार्म क्लॉक आपके जहन में हो तो रिकमेंड मी। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग, आरजे नुपुर दिस साइड।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
2: जोश में रहो।
0: इमेजिन एक ऐसा दिन आएगा कि आप बढ़िया वाली स्क्रिप्ट राइटिंग करोगे किसके लिए, जस्ट फॉर योरसेल्फ यार। आप अपनी लाइफ के ऊपर एक किताब लिख रहे हो, चैप्टर बाय चैप्टर्स उसको नाम दे रहे हो और अपनी बायोग्राफी को लेकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि अरे अरे सुनो सुनो, मेरी लाइफ का ये वाला पार्ट तो जरूर डालना और ये वाला तो भूलना ही नहीं। इमेजिन कितनी मैसिव सक्सेस मिल चुकी होगी आपको। हाँ, सो ऐसा ही कुछ हो रहा है द साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जी के साथ। आंजी, सुनने में आया है कि अपनी ही लाइफ पर मूवी बनाने की तैयारी कर रहे हैं सुपरस्टार रजनीकांत, और नो डाउट ये खुद ही उस मूवी में नजर आएंगे। एनीवेज, वन ऑफ द बेस्ट मूवी हो सकती है बिकॉज रजनीकांत को सिर्फ एक सुपरस्टार की तरह देखा नहीं जाता है, भगवान की तरह पूजा भी जाता है, राइट? ऑन दिस नोट मैं आज इन पर कुछ और भी बातें करेंगी। डोंट गो एनीवेयर।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। सोचो सोचो सोचो, आप किसी पार्टी फंक्शन को अटेंड करने गए हैं, आपने प्लेट भर के ऑलरेडी बढ़िया वाला खाना खा लिया है, अब आपको और ऑफर किया जाए तो क्या वो टेस्ट आएगा? डेफिनेटली नॉट यार। जो टेस्ट पहली बाइट में और पहली प्लेट में होता है ना, वो बाद में कहाँ आता है यार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ बनी हुई है। एनीवेज, अगर हम मूवीज की बात करें तो जो पहले पहले पार्ट में मजा होता है, दूसरी तीसरी चौथी में कहाँ होता है, बट फिर भी ठीक है, काम करने वाले तो काम कर रहे हैं। भाई, सुनने में आ रहा है धूम मूवी का फोर्थ पार्ट प्लान किया जा रहा है, और उसमें भी सुनने में आ रहा है कि रणबीर कपूर को लिया जा रहा है। रियली? सच में? अरे नहीं यार, मैं अगर अपनी जगह आ गई ना तो मैं तो बोलूंगी जो द वेरी फर्स्ट मूवी आई थी ना, जिसमें अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम का फेस ऑफ दिखाया गया था, वो वाली मुझे चल जाएगी। अरे आई लव्ड इट यार। आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: गाना चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस आपकी चॉइस।
0: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
1: चेक इट आउट।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में रहो।
2: देखो देखो देखो आज एक ऐसे एक्टर का बर्थडे है जिन्हें एक्टिंग की वजह से तो पॉपुलैरिटी मिली लेकिन अपने अच्छे कामों की वजह से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। एनीवेज़ मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी सोनू सूद। हाँ जी, जिन्होंने तेलुगु मूवी से इंडस्ट्री में एंट्री करी थी। मिस्टर इंडिया में मॉडलिंग के दौरान ये कॉन्टेस्टेंट रहे थे। सोनू सूद का है आज बर्थडे। सो बहुत सारी मूवीज में, कुछ मूवीज इनकी बॉलीवुड में भी रही है जिसकी वजह से इन्होंने और ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी। ऑन दिस नोट, इन्हीं की आवाज में एक फेमस सी मूवी का एक फेमस सा डायलॉग मैं यहाँ पे प्ले करने वाली हूँ और वो डायलॉग कौन सी मूवी से है आपको गेस करना है।
3: बहुत भरोसा है अपने आप पर।
4: भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत भी, और पागलपन हद से ज्यादा।
2: एग्जैक्टली, अगर आप पहचान गए हैं इस मूवी का नाम तो क्विकली बता दो मेरी जान। रेडियो मसी 24/7 लाइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे डीएम करके आज नुपुर दिस साइड।

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।